और दोस्तों इस गीत के साथ ही मुझे यानी अर्चना बिसारिया को भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार

17 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, भाग होगा 283। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक। इस श्रृंखला की पहली कड़ी कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की।

सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक।

सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा अभिनेता सचिन पिलगांवकर पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली की पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेज श्री कांबले का। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुनेगा सुरीला सफर। दोपहर 2 बजे त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम। सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली 3 बजे से, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुने संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला होगी ताल प्रवाह तबला वादक। इस श्रृंखला की पहली कड़ी कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी शाही दावत, लेखन पीवी राव का, निर्देशन साधना भारद्वाज का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक डेविड धवन पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10 बजे जाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण।

ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पतिवियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आज आपने सुना भाग 283।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: नमस्कार मित्रों, समूची सृष्टि एक निश्चित लय में गतिमान है और इस चराचर जगत की गति लय जैसे किसी ताल में निबद्ध है और यह मानव जीवन प्रवाहमान है इसी ताल में। श्रोताओं, आज से आरंभ हो रही है श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी रसिक श्रोताओं, आप सभी को मैं रामकृष्ण दास एक नई श्रृंखला में स्वागत करता हूं। इस संगीत श्रृंखला का नाम है ताल प्रवाह। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस घराने के जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ सारंगी में संगति प्रदान करेंगे उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब। खान साहब, आपको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और हारमोनियम पर संगति प्रदान करेंगे श्री विनोद पड़गे जी। विनोद जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: आज से लेकर कई दिनों तक ये ताल प्रवाह चलता रहेगा, जिसमें तालों के बारे में और तबला वादन के विभिन्न शैलियों के बारे में श्री कालीनाथ मिश्रा जी वादन करेंगे और इसके बारे में बोलेंगे भी। मिश्रा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके तबला वादन का शुभारंभ बहुत कम उम्र में हुई होगी, और जितना मुझे पता लगा कि आप गायक परिवार से हैं और आपने तबला वादन की तालीम पंडित शंभुनाथ मिश्रा, पंडित मदन मिश्रा एवं बनारस घराने के मूर्धन्य कलाकार पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज से प्राप्त की। मिश्रा जी, हम आपके बारे में और अधिक कुछ जानना चाहेंगे।
2: दास बाबू, सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ संगीत सरिता का, जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं एक संगीत परिवार में जन्म लिया। 4.5 साल की उम्र में हमने तबला शुरू कर दिया।
1: वाह।
2: और कहते हैं कि पूजा पाठ करने में सबसे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं। हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी हमेशा अपने कार्यक्रम का समापन गणेश परण से करते थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गणेश परण से शुरू किया जाए। 3 ताल से लेता हूँ दास बाबू। 3 ताल सभी तालों का राजा है, और कहते हैं कि जिसने 7 सीख लिया वो रे तक पहुँच जाएगा, जिसने 10 सीख लिया वो तधा तक पहुँच जाएगा।
1: क्या कहने।
2: तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले विलंबित 3 ताल लिया जाए। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गिट गिड गिट गिड गिट गिड थुन थुन तत्थई जय जग वंदन वक्त तुंड दानी दाता दिघन हरन शुभ करन धागे ना धागे धुम कीट तक धुम कीट तक धुम कीट थुड़ंग तक। तो मैं इसे विलंबित 3 ताल में बजाता हूँ। फारूक भाई,

पहले मैं ये गणेश परण पढ़ के सुनाता हूं। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गिट गिड़ गिट गिड़ गिट गिड़ थुन थुन तत्थई जय जग वंदन वक्रतुंड दानी दाता विघन हरण शुभ करण धागे न धागे धूम कीट तक धूम कीट। इसमें खास पखावज का अंदाज है कि भगवान गणेश पखावज कैसे बजाते थे, उन्हीं का एक अंदाज है, क्योंकि भगवान गणेश पखावज बजाते थे।

थक धूमा कीट धूमा कीट तक धूमा कीट धूमा कीट तक धूमा कीट थुरंग चटकतकतकिन था। ये था भगवान गणेश का आराधना। अब बनारस का उठान का क्या अंदाज है? प्रस्तुत है उठान।

ये जो एक अंदाज है बनारस का, थाप, चाट और गत्ता तीनों कैसे बोलता है,

0: ये था हमारा उठान।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत चीजें आपने प्रस्तुत की।
0: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद।
1: हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो उठान की बात की, ये किस लिए बजाया जाता है? हमने सुना है कि नृत्य में कुछ आमद या सलामी ये भी कहते हैं, तो ये क्या चीज है?
0: उठान का मतलब होता है जोरदार बोलों का प्रवाह, नाम है ताल प्रवाह, और सरिता में भरी हुई संगीत। उठान का जो एक अंदाज है वो सिर्फ नाच में नहीं होता है, एक सारंगी प्लेयर, एक सितार प्लेयर, हर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले पहले एक मूड बनाते हैं, तो वो अपने सुर को देखते हैं। लेकिन बनारस का जो अंदाज है, हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी या शंभुनाथ मिश्रा जी, उनका जो एक अंदाज है, उठान का मतलब होता है माहौल बनाना। जब बरसात होती है, बरसात जब होने वाला होता है, तो पहले बादल अपना मूड बनाते हैं, तब कहीं बारिश होती है, और बादल का मूड बनेगा 15 मिनट में कि 20 मिनट में। तो जो एक अंदाज है, धा का साउंड बोलों के साथ तालमेल, एक प्रेम विलाप बोलों के साथ, छोटी छोटी तिहाइयां लेके तब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। फिर उठान का जो साउंड होता है वो पखावत से आया है वो।
1: अच्छा
0: जी हाँ, वो पखावत से आया है। तो उठान का मतलब होता है कि पहले ही पब्लिक में ऐसा उठान बजा दो कि पूरी पब्लिक कम से कम एक घंटे आपको देखती रहे, और वो बड़ा पावरफुल साउंड होता है।
1: वाह
0: जी।
1: मिश्रा जी, आपने इतना खूबसूरत माहौल तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
0: धन्यवाद।
1: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के।
0: देखते हैं कि हमें संगीत सरिता ताल प्रवाह में कौन सी गाना सुनाते।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत कर रहे थे रामकृष्ण दास। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर का। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जी।

नमस्कार, यह है आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत इस परमपिता के चरणों में ध्यान लगा

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ₹8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर।

10 बजे सुनिए कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। सखियों का प्रोग्राम महिला सभा आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। ग्यारह बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम। मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे। दिन में 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। सुरीला सफर का समय होता है दोपहर 1 बजे। 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 नगमे पेश किए जाते हैं दोपहर 2:30 पर। सखियों का अपना प्रोग्राम सखी सहेली सुनिएगा 3 बजे। 4 बजे सुनिए सेहतनामा। 5 उज्जैन से संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:00 भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 21 मिनट पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए माटेरी बात।

रात 8 बजे सुनिएगा प्रोग्राम सुर्खियों में। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 9 बजकर 15 मिनट पर सुनिए उर्दू समाचार। रात को 9 बजकर 30 मिनट पर प्रोग्राम होगा पब्लिक स्पीक दिल्ली से, जबकि रात के 10 बजे सुनिए आपकी फरमाइश। रात के 10 बजकर 30 मिनट पर प्रोग्राम होगा राग रजनी, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7 बजकर 10 मिनट होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, भोपाल को खेलों की राजधानी बनाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कल दी गई श्रद्धांजलि।

0: इंदौर में प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, भोपाल में हुआ प्रतिमा का अनावरण। नाग पंचमी पर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले और जबलपुर रीवा और शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बीते कुछ सालों से भोपाल में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार भोपाल को खेलों की राजधानी बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कल राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप राष्ट्रीय रैंकिंग के तीसरे संस्करण के समापन पर चैंपियनशिप की विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल की टीम ने 20 मेडल हासिल कर पहला स्थान, नेवी यूथ स्पोर्ट्स कंपनी गोवा की टीम ने दूसरा स्थान और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब सिकंदराबाद की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी कार्य पद्धति से आमजन में स्वीकार्यता प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी पद दे सकती है, पदाधिकारी बना सकती है, जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, लेकिन नेता हमेशा जनता बनाती है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी की प्रेरणा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा इंदौर के दशहरा मैदान में लगाई जाएगी। कल उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से यह प्रतिमा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग 4 महीनों में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आधारशिला समारोह में कहा कि प्रतिमा न केवल एक स्मारक होगी बल्कि अटल जी के विचारों और को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी।
1: केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ और पार्वती कालीसिंह चंबल ये पूरी योजना से राजस्थान। जब मैं यहाँ अटल जी के नाम पर इस पथ का लोकार्पण कर रहे हैं तो एक और 4 नंबर विधानसभा का 7 करोड़ की लागत से फूटी कोठी चौराहे से संत श्री सेवालाल ब्रिज का भी सर्विस रोड का भूमि पूजन हुआ।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य का विषय उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए। वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले मंदिर में पट खुलने के बाद लगातार 24 घंटे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के साथ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद उन्होंने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, यानी पानी की मुख्य टंकी से लेकर नल तक पानी के पूरे आपूर्ति के दौरान उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। पानी के पुराने और जर्जर भंडारण टैंकों को तेजी से बदलकर नए टैंक लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने जल स्रोतों और आउटलेट बिंदुओं पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुलिस प्रशासन शिक्षण संस्थाओं अभिभावकों और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही युवा नशा मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल कल लोकभवन में पुलिस नगर से

सेवा और नागरिक सुरक्षा के पदक प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने प्रदेश पुलिस के उन सभी कर्मवीरों का अभिनंदन किया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और विशिष्ट सेवाओं से मध्य प्रदेश पुलिस और प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल है। भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में भी 18 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, वह इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में थ्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेगी। आयुष शेट्टी का सामना विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन चीन के शियू कोई से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में श्रावण मास के तृतीय सोमवार के अवसर पर आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली जाएगी। दमोह जिले में कल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर नोटहा से लेकर दमोह तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिंडौरी जिले के बिलगांव बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए आज सुबह 8 बजे दो बांध के गेट खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह कल आज से 2 दिवसीय आगरमालवा जिले के भ्रमण पर रहेंगे। शिवपुरी में युवा संगम कार्यक्रम 20 अगस्त को शासकीय LSG के महाविद्यालय पोहरी में आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। भिंड जिले में 30 MP बटालियन NCC और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से CATC कैंप में सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

मालवा की इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अवंतिका से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नया उत्साह और जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर लेकर आती है। आज 17 अगस्त का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज उस अमर बलिदान की विशेष याद दिलाता है, जब भारत माँ के वीर सपूत मदन लाल ढींगरा जी ने देश की स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आइए राष्ट्रभक्ति, प्रेरणा और असीम ऊर्जा के साथ करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत इस ऊर्जावान और देशभक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन और आसपास की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। उज्जैन में नागपंचमी और श्रावण मास के तीसरे सोमवार के विशेष संयोग पर रविवार मध्यरात्रि 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर का ये मंदिर वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के अवसर पर खुलता है। कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह का माहौल नजर आया। अब बात दूसरी खबर की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का विशेष पूजन और श्रृंगार किया गया। सुबह करीब 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित भगवान महाकाल की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन किया। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अब एक और महत्वपूर्ण खबर। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए शुरू की गई ऑनलाइन टिकट व्यवस्था से मंदिर समिति को 39 लाख रुपए की आय हुई है। नागपंचमी के अवसर पर साल में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन टिकट बुक किए। विशेष दर्शन व्यवस्था के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधा देने के साथ मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बात आज निकलने वाली श्रावण की तीसरी सवारी की। आज श्रावण मास की तीसरी सवारी निकाली जाएगी। बाबा महाकाल की सवारी को लेकर शहर में विशेष तैयारियां की गई हैं। सवारी के दौरान पुलिस, होमगार्ड, सेना और स्कूली विद्यार्थियों के साथ निजी बैंड भी भगवान शिव की धुन प्रस्तुत करेंगे। भक्ति और देशभक्ति के इस अनूठे संगम से बाबा महाकाल की सवारी का माहौल और भी खास नजर आएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सवारी में शामिल होने की संभावना है। अब बात सुरक्षा व्यवस्था की। बाबा महाकाल की तीसरी सवारी और नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को देखते

0: हुए उज्जैन में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। करीब 36 घंटे तक 2400 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। पूरे महाकाल क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 200 से अधिक कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। अब एक खास खबर। प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास ने उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकालीन भस्म आरती में भाग लिया। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान कुमार विश्वास भगवा सोला पहने नजर आए। भस्म आरती में शामिल होकर उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब एक धार्मिक अनुष्ठान की खबर। भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी धाम मंदिर परिसर में श्रावण मास के अवसर पर विश्व और जन कल्याण की कामना के साथ 11 दिवसीय अति रुद्र महाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। यह अनुष्ठान भर्तरी गुफा के गादीपति योगी पीर महंत रामनाथ महाराज के सानिध्य में 101 ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना के इस विशेष अनुष्ठान से मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालुओं भी धार्मिक आयोजन में शामिल होकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से में फिलहाल इतना ही। अब हम सुनेंगे महाकाल नागचंद्रेश्वर मंदिर समिति को, समिति की उपप्रशासक श्रीमती सीमी यादव जी को, जो हमें नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की गई दर्शन व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगी।
1: देखिए, नाग पंचमी पे भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन को आने के लिए श्रद्धालुओं की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति एवं प्रशासन के द्वारा दो तरीके के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एक सामान्य दर्शन का मार्ग रहेगा। सामान्य दर्शनार्थी जो है उनका प्रवेश कर्कराज पार्किंग पे होगा, वहीं पर उनके लिए पार्किंग की सुविधा है। वे अपना वाहन पार्क करके कर्कराज पार्किंग स्थित प्रवेश द्वार से प्रवेश करके भील समाज धर्मशाला, गोंड मोहल्ला, चार धाम, हरसिद्धि चौराहा और बड़ा गणेश होते हुए द्वार क्रमांक 4 से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद विश्राम धाम होते हुए श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे तथा प्रीपेड बूथ से बाहर निकलेंगे। निकासी के पश्चात वे श्रद्धालु 24 खंबा रोड से होते हुए पुनः कर्कराज पार्किंग की ओर प्रस्थान करेंगे। और वहीं हम शीघ्र दर्शन की यदि बात करते हैं तो शीघ्र दर्शन हेतु श्रद्धालुगण हैं उनका प्रवेश हरसिद्धि पाल की ओर से निर्धारित किया गया है। वहां पर हमारे शीघ्र दर्शन काउंटर है जहां से वे टिकट प्राप्त करके बड़ा गणेश मार्ग से होते हुए प्रवेश द्वार क्रमांक 5 से करते हुए विश्राम धाम होते हुए श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। और दर्शन उपरांत वे भी प्रीपेड बूथ से निकासी कर 24 खंबा होते हुए पुनः हरसिद्धि पाल की ओर जाएंगे। ये तो नागचंद्रेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था हो गई। इसके साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन व्यवस्था भी चलेगी, जिसमें भी हमारे दो प्रकार के दर्शन हैं। एक हमारा सामान्य दर्शन, जिसमें श्री महाकालेश्वर भगवान के सामान्य दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का प्रवेश त्रिवेणी संग्रहालय स्थित त्रिवेणी प्रवेश द्वार से होगा। श्रद्धालु नंदी द्वार होते हुए मानसरोवर फैसिलिटी, गणेश मंडप एवं कार्तिक मंडप से दर्शन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। दर्शन उपरांत एम्बुलेंस गेट से निकासी करते हुए पिनाकी द्वार से बाहर जाएंगे। और शीघ्र दर्शन की जो व्यवस्था है उसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश नीलकंठ द्वार से निर्धारित किया गया है, जहां पर बने टिकट काउंटर से वे टिकट प्राप्त करके जो है मानसरोवर मानसरोवर से

0: आगे बढ़ते हुए गणेश मंडप, कार्तिक मंडप के मार्ग से दर्शन करके आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की जो वेबसाइट है www.mahakaleshwar.mp.gov.in, उसके माध्यम से भी श्रद्धालु ऑनलाइन टिकट शीघ्र दर्शन के प्राप्त कर सकते हैं और बताए गए निर्धारित मार्गों से मंदिर में प्रवेश करके दर्शन लाभ ले सकते हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें प्रमुख पार्किंग स्थल है हरि पाठक पुल के समीप मेघदूत पार्किंग इंदौर रोड से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। इसके अतिरिक्त कर्कराज महादेव मंदिर के पास कर्कराज पार्किंग स्थल, वहां पर भी श्रद्धालुगण अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। एक प्रमुख पार्किंग स्थल है कार्तिक मेला ग्राउंड पर भी लोग अपना वाहन पार्क करके बाबा महाकाल और नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और एक हमारा पार्किंग स्थल बड़नगर रोड पर है धान उपार्जन केंद्र के पास, वहां पर भी श्रद्धालुगण के लिए पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और विशेषकर महिला, वृद्धजन और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने मंदिर समिति की तरफ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेयजल की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की है। साथ ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर चलित शौचालय और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगाई हुई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस की सुविधा है किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। किसी भी खोया पाया या असुविधा की अन्य स्थितियों से निपटने के लिए जो है स्काउट गाइड के माध्यम से और जो हमारे प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमने पीए सिस्टम के द्वारा जो है लगातार उद्घोषणा की जाएगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी परेशानी वहां पर बता करके और सेवा का लाभ ले सकता है। और यदि फिर भी किसी प्रकार की परेशानी किसी श्रद्धालु को होती है तो वो मंदिर के टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर भी संपर्क कर सकते हैं। दर्शन के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए और दर्शनार्थियों के सुगम दर्शन के लिए जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और उनके समुचित दर्शन जो है हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय कलेक्टर सर और प्रशासक सर, एसपी सर सभी 24 घंटे महाकाल मंदिर में उपस्थित रहेंगे और महाकाल मंदिर कंट्रोल रूम के माध्यम से पल पल पर हर चप्पे पर नजर बनाए रखे होंगे और स्थिति को नियंत्रण करते रहेंगे।
1: तो श्रोताओं, इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे विचारों और हमारी दिनचर्या को नई ऊर्जा देने का समय होता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों, चेहरे पर मुस्कान और अपने समाज और परिवार के प्रति दायित्व के भाव से करते हैं तो दिन की हर चुनौती बेहद आसान लगने लगती है। जीवन में हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह होता है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस पर मेहनत, लगन और सकारात्मकता की कैसी कहानी लिखते हैं। आइए इसी संकल्प और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये सुंदर प्रेरणादायक गीत।

श्रोताओं, आज 17 अगस्त का दिन जहां एक तरफ हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, वहीं दूसरी ओर देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान और अमर नायक को नमन करने का अवसर भी देता है। आज ही के दिन यानी 17 अगस्त 1909 को मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी ने इंग्लैंड की पैंटन विले जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। विदेशी हुकूमत के दमन चक्र का जवाब देते हुए कर्जन वायली को ढेर करके उन्होंने पूरी दुनिया को भारत के युवाओं के अदम्य साहस और देशभक्ति का एहसास कराया था। फांसी के फंदे पर झूलने से ठीक पहले उनके अंतिम शब्द थे, मेरी बस यही प्रार्थना है कि मैं बार बार भारत माता की गोद में जन्म लूं और उसी के मान सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करूं। ऐसे महान वीर सपूत का ये निस्वार्थ बलिदान हमारे दिलों में हमेशा देश प्रेम की ज्वाला जलाए रखेगा। आइए मदन लाल ढींगरा जी की पावन स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं ये अमर देशभक्ति गीत।

साथियों, हमारी नगरी उज्जैन हमेशा से केवल कला, साहित्य और शिक्षा की ही नहीं बल्कि प्रखर राष्ट्र चेतना की भी साक्षी रही है। मालवा और अवंतिका की इस ऐतिहासिक माटी ने हर युग में विचारकों, साहित्यकारों और राष्ट्रभक्तों को प्रेरित किया है। यहाँ की फिजाओं में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें अपनी समृद्ध धरोहर से जोड़ती है और साथ ही समाज के प्रति हमारी जवाबदेही को रेखांकित करती है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जब भी देश को बदलाव, एकजुटता और नेतृत्व की आवश्यकता हुई, इस पावन भूमि ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। आज के इस अवसर पर आइए हम अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लें और अपनी राष्ट्रभक्ति को अपने कर्मों में ढालने का संकल्प लें। आइए सुनते हैं ये जोशीला और गौरवमय गीत।

साथियों, घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही हैं और बातों ही बातों में आज के सुप्रभात उज्जैन का ये खास अंक अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज हमने अपने इस सफर में जहां अमर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी के अप्रतिम बलिदान और देशभक्ति को याद किया, वहीं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने शहर और देश के प्रति कर्तव्यों पर भी मंथन किया। आइए आज हम ये दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा और सकारात्मकता के साथ काम करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो और सफलता से भरा हो। आपकी मुस्कान यूं ही बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुनते हैं आज का ये अंतिम प्रेरणादायक गीत।

साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। पूरी उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपकी सुबह को राष्ट्र प्रेम, नई सोच और ऊर्जा से सराबोर कर पाई होगी। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह ठीक 7:20 पर फिर होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना

0: योजना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब

0: 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17 या 23-71-7106 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस से भिड़ी।

0: पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम, कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा, पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी, छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines: Self-enumeration for census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
4: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics.

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वेलकम बैक दोस्तों, 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे हिमानी के साथ। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि छोटी सी बात दिमाग में आती है और आपका मन उसकी पूरी काल्पनिक वेब सीरीज बना देता है? उनसे ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? दोस्तों इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। हम अक्सर बीती हुई बातों के पछतावे में या आने वाले कल की चिंता में आज के खूबसूरत पल को जीना भूल जाते हैं। चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, दिमाग को शांत करते हैं और सुनते हैं ये रिफ्रेशिंग गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम तो या पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ आज है, ये पल, ये लम्हा, तो फिर क्यों ना इस पल को खुलकर जिया जाए। आइए सुनते हैं जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करता ये गाना।

FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ है। दोस्तों, जब भी दिमाग में विचारों का ओवरलोड होने लगे तो उससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद को किसी काम में बिजी कर लेना। कोई पसंदीदा गाना सुन लीजिए, थोड़ी देर वॉक कर लीजिए, पौधे में पानी डालिए या अपने किसी दोस्त से बात कर लीजिए। जब आप एक्शन में आते हैं तो दिमाग सोचना बंद कर देता है। चलिए मूड को थोड़ा और लाइट करते हैं इस मस्ती भरे गाने के साथ।

FM 102.5 MHz पर आप आर जे हिमानी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जीवन में हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। जब हम हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तभी ओवरथिंकिंग बढ़ती है। कभी कभी चीज़ों को समय पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। गो विथ फ्लो, जो होगा अच्छा ही होगा। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: FM 102.5 MHz पर बातों और सुरों का सफर जारी है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग की एक बड़ी वजह सेल्फ डाउट भी होता है, यानी खुद की क्षमताओं पर शक करना। हम सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। दोस्तों, याद रखिए कि आप में वो हर काबिलियत है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। चलिए फिर इसी बात पर सुनते हैं ये मजेदार गाना।
1: पत्थर है वो मुझे रोक।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम अज्ञानी आरजे। दोस्तों, जब दिमाग विचारों के जाल में उलझ जाता है तो संगीत एक जादुई दवा की तरह काम करता है। संगीत की स्वर लहरियां दिमाग के तनाव को पल भर में दूर कर देती हैं। इसलिए तो रेडियो आपके पास है। जब भी लगे कि सोच सोच कर सर भारी हो रहा है तो बस 102.5 FM ट्यून कर लीजिए। आइए मखमली आवाज में सुनते हैं ये बेहद सुकून देने वाला गीत।

FM 102.5 MHz पर सुरों का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। हर काम एकदम परफेक्ट ही हो ये ज़रूरी नहीं है। गलतियां होना इंसान की फितरत है और गलतियों से ही हम सीखते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति मत खोइए, जैसे हैं उसमें खुश रहिए। आइए सुनते हैं ये मनमोहक और सुकून भरा गाना।

आरजे हिमानी के साथ आप जुड़े हुए हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि चिंता चिता समान होती है, ये हमारी ऊर्जा और मुस्कान दोनों छीन लेती है। तो आज सावन सोमवार के इस पवित्र दिन पर यह तय कर लीजिए कि आज आप बिना किसी बात की टेंशन लिए गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी का मजा लेंगे और अपनों के साथ मुस्कुराएंगे। आइए सुनते हैं ये दिलकश गाना।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर गपशप और नगमों का ये संगम जारी है। दोस्तों, हमारा उज्जैन शहर की हवा में एक अद्भुत सुकून है। यहाँ शिप्रा तट पर बैठकर बहते पानी को देखना या महाकाल के प्रांगण में बैठना, ये सब हमारे मन को शांत कर देता है। जब भी दिमाग में ओवरथिंकिंग का दौर शुरू हो, थोड़ा समय प्रकृति के साथ और अपने पावन उज्जैन की शांत गलियों में बिताइए। चलिए सुनते हैं ये मस्ती भरा और प्यारा सा ट्रैक।

दोस्तों, ओवरथिंकिंग रोकने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। दूसरों को खुश करने या उनकी बातों को दिल से लगाने की जगह खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और उसे प्रायोरिटी देना। जो बातें आपके वश में नहीं है उन्हें जाने दीजिए और अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लीजिए। सुनिए ये बेहद सुरीला गाना।

दोस्तों, वक्त का पहिया लगातार चलता रहता है और बातों ही बातों में हमारा आज का ये खास सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि सोचिए कम जिए ज़्यादा का ये मैसेज आज आपके दिल को छू पाया होगा। आज से ही टेंशन छोड़िए, खुलकर मुस्कुराइए और हर लम्हे का आनंद लीजिए। आइए आज की हमारी प्लेलिस्ट का अंत करते हैं इस बेहद खूबसूरत गाने के साथ।

दोस्तों सोचिए कम जिए ज्यादा टॉपिक पर बातों और गानों के साथ ये एक घंटा कैसे चुटकी बजाते ही बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि आज का उज्जैनी आरजे प्रोग्राम आपकी सुबह को एकदम लाइट म्यूजिकल और स्ट्रेसफुल बना पाया होगा। अब आपकी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 17 अगस्त है और सोमवार की इस ताज़ा सुहानी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत अगर बेहतरीन और सुरीले बॉलीवुड बीट्स के साथ हो तो पूरा हफ्ता शानदार गुजरता है। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे गानों का मजा लेंगे जो आपके दिन में नई ऊर्जा और मिठास भर देंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं इस दिल को छू लेने वाले गाने के साथ।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
0: कॉन्डोम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों अब इस मंडे मॉर्निंग में थोड़ा और प्यार, थोड़ा और मखमली एहसास खोलते हैं। जब बात हो दिल से दिल के रिश्ते की और खूबसूरत एहसासों की, तो ये गाना सीधे रूह में उतर जाता है। फिल्म बागी 4 से अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज़ में सुनिए ये रोमांटिक ट्रैक।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, प्यार और गानों का ये सुहाना सफर आगे बढ़ रहा है। अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो दिल की धड़कनों को एक मीठी सी लय दे देता है। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ये खूबसूरत और रोमांटिक नगमा आपकी सुबह को और भी खास बना देगा, तो सुनिए और महसूस कीजिए।

श्रोताओं, आप गानों की इस प्लेलिस्ट में थोड़ी सी मिठास और जबरदस्त मेलोडी जोड़ते हैं। फिल्म मुंजा का ये ट्रेंडिंग गाना आजकल हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। सुनिए ये बेहद प्यारा गाना।

FM 102.5 MHz पर गानों की ये सुरीली महफिल यूं ही सजी हुई है। श्रोताओं, अब बारी है अपनी सुबह में थोड़ी सी ताजगी और दिलकश नज़ारे समेटने की। फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का ये ट्रैक आपको एक खूबसूरत रोमांटिक एहसास से भर देगा। सुनिए ये दिलकश गाना।

श्रोताओं, हमारा ये सुहाना प्रोग्राम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन समापन तो एकदम खास और खूबसूरत होना चाहिए। फिल्म स्त्री 2 का ये ब्लॉकबस्टर रोमांटिक गाना अपनी सुरीली बीट्स और आवाज से आपकी सुबह में मिठास घोल देगा।

क्या शानदार और खूबसूरत समापन था। आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर यह आधा घंटा आपके साथ इन सुरीले गानों के बीच कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है बॉलीवुड बीट्स ने आपके हफ्ते की शुरुआत एकदम ताज़ा और ऊर्जावान बना दी होगी। अब अपनी उद्घोषिका हिमानी को दीजिए इजाज़त। अपने पूरे दिन को मुस्कुराते हुए इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार। धर्म, आध्यात्म, आस्था और बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की माटी से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में। मैं हूं आपकी उद्घोषिका हिमानी, आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। अवंतिका नगरी के दिव्य, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का ये सुहाना सिलसिला यूं ही जारी रहता है। श्रोताओं, आज सावन का पवित्र सोमवार है और साथ ही आज नाग पंचमी का पावन पर्व भी है। आज का दिन हमारी उज्जैनी के लिए बेहद खास और अलौकिक है, क्योंकि आज के दिन अवंतिका नगरी में एक ऐसा दिव्य द्वार खुलता है जिसका साक्षी बनने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। जी हाँ, आज उज्जैन दर्शन में हम आपको यात्रा कराएंगे विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर की, जो साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। तो चलिए, बाबा महाकाल और नागचंद्रेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं इस पावन यात्रा की इस मधुर शिव भजन के साथ।

0: श्रोताओं, अब नाग पंचमी के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं एक खास वार्ता, जिसमें नागचंद्रेश्वर मंदिर के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी। उनसे ये विशेष वार्ता की है मयंक शुक्ला जी ने, तो आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत।
1: एक ऐसा मंदिर जिसके कपाट पूरे वर्ष में केवल एक बार खुलते हैं, एक ऐसा दर्शन जिसकी प्रतीक्षा श्रद्धालु पूरे एक वर्ष तक करते हैं, और एक ऐसा पर्व जब शिव और नाग आराधना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ये है उज्जैन, महाकाल की नगरी। महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर विराजित है भगवान नागचंद्रेश्वर। नाग पंचमी पर इनके कपाट खुलते हैं और लगभग 24 घंटे तक श्रद्धालुओं को दर्शन मिलते हैं। लेकिन नाग पंचमी पर नाग की पूजा क्यों होती है? शिव और नाग का क्या संबंध है? और नागचंद्रेश्वर के दर्शन इतने विशेष क्यों है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती है हमारी आज की ये यात्रा, नाग पंचमी से नागचंद्रेश्वर तक। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाने वाला महीना। शिव पुराण में श्रावण को भगवान शिव का प्रिय मास बताया गया है। सावन आते ही शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो जाता है, कांवड़िए पवित्र जल लेकर निकलते हैं और हर शिवालय में गूंजता है हर हर महादेव। इसके पीछे एक प्रमुख पौराणिक मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हुआ और वे कहलाए नीलकंठ। मान्यता है कि विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर जल अर्पित किया।

0: यही कारण है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। आज का दिन नाग पंचमी। नाग पंचमी का क्या है पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व, आइए जानते हैं महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरिजी महाराज से।
1: देखिए स्पष्ट है, नाग के बारे में एक नाग गायत्री है और नौ कुला विद में विष्णु गायत्री नहीं पर नो सर्पा प्रचुर नाग के नौ कुल है। इनकी आध्यात्मिक देवी निम्न नामों से जैसे तक्षक हो गया, अनंत हो गया, वासुकी हो गया, शेष हो गया, पद्म हो गया, कर्कोटक हो गया, और इसका एक सीधा सा तात्पर्य निकलता है कि नाग अपने आप में हमारे पूर्वजों का या हमारे प्राच्य शक्ति जो की इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जिस प्रकार से हम रेटाइल से इंटेलिजेंस बने, होमो सेपियंस बने, उसका भी एक सिंबोलिज्म इसके अंदर साइंटिफिक मैनर में भी है। पुराण के अंदर एक स्पष्ट भाव यह रखा गया कि जिस समय पे नागराज तक्षक ने उज्जैनी में शिव की कांड बहुत घोर साधना करी और उस साधना के अंदर नागराज को वरदान मिला और साथ में वरदान के एक प्रारूप के रूप में कहा गया कि आमतौर पे नाग जो है उनको पाताल का प्रतीक माना जाता है, पाताल के राजा माना जाते हैं, किंतु उज्जैन एक मात्र नगर होगा जहाँ पर उसे शिव अपने मुकुट के पास यानी अपने मंदिर के शिखर के पास निशान देंगे। तो वो जो स्थान कहलाया यहाँ पर उज्जैन में पुराने का दास है नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहलाया। तो अपने आप में बेहद विहंगम है और इसकी जो साधनाएं है वो तंत्र मार्ग के अंदर है, आगम में अलग है, निगम में अलग है और साथ में सहज भाव के लोग भी बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं नाग चंद्रेश्वर की।
0: भारत में नाग पूजा की परंपरा कितनी प्राचीन है, नाग पंचमी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है, आइए सुनते हैं इतिहासकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शुभम केवलिया जी से।
2: जहां तक विषय नाग पूजा का है तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि शिव पूजा और नाग पूजा है वो इंटर रिलेटेड है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जहां तक नाग पूजा की बात करें तो उसका पर्याप्त जो पुरातात्विक प्रमाण है वो हमको सरस्वती सभ्यता में दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता से हमको एक मुहर मिली है जिसको हम अंग्रेजी में सील बोलते हैं, उसमें एक योगिक पोस्चर में एक ह्यूमन फिगर बना हुआ है यानी मानव आकृति बनी हुई है, उसके इर्द गिर्द हमको दो सर्प जो है वो दिखाई देते हैं। विद्वानों का ऐसा मत है कि निश्चित तौर पर उसका कोई धार्मिक महत्व उस काल में रहा होगा। हम आगे बढ़े, हम केवल हिंदू समाज तक सीमित न रहें तो हमको बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा जो कि भारत में ही पल्लवित हुई है, इन दोनों परंपराओं में भी हमें नाग पूजा का पर्याप्त विवरण दिखाई देता है, उसके पुरातात्विक साक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उनमें हमको उनके शीश के ऊपर कई जगह हमें सर्प का अंकन दिखाई देता है। इसके साथ ही बुद्धिज्म में ये कहा गया है या बौद्ध परंपरा में ये कहा गया है कि नाग जो है वो रक्षक हैं। यही कारण है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व या उसके पहले भी जो स्तूप बन रहे हैं उन स्तूपों में जो सांची का स्तूप है या जो भरहूत का स्तूप है उसमें हमें नाग जो है वो आधा मानव शरीर व आधा नाग का शरीर जो है ऐसी आकृतियां हमको स्तूप की पूजा करते हुए दिखाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर यह स्थापित हो जाता है कि बौद्ध परंपरा में भी नाग पूजा का बड़ा महत्व था या नाग पूजा उनमें भी अस्तित्व में रही है। हम यदि जैन परंपरा की बात करें तो हम जानते हैं कि जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ उनका जो शीश है उनके ऊपर भी नाग का अंकन एक सरपेंटाइल हुड जैसा अंकन जो है वो हमको दिखाई देता है। इवन हम शिवजी की प्रतिमाएं भी देखें तो उनके साथ नाग हमेशा दिखाया गया है यानी वो उस जो मूर्ति कला है उसका एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार यदि हम संपूर्ण दोनों स्वरूपों को पूर्ण रूप से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नाग पूजा और शैव परंपरा ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड है।
0: जिस मंदिर के दर्शन के लिए पूरे वर्ष प्रतीक्षा हो वहाँ नाग पंचमी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्वाभाविक है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन पहुँचते हैं, ऐसे में आस्था के इस सैलाब को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। प्रवेश से लेकर दर्शन तक, कतार से लेकर सुविधाओं तक, इस बार क्या है प्रशासन की तैयारी, आइए जानते हैं डिप्टी कलेक्टर और महाकाल मंदिर की प्रशासिका श्रीमती सिमी यादव से।
3: देखिए नाग पंचमी पे भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन को आने के लिए श्रद्धालुओं की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति एवं प्रशासन के द्वारा दो तरीके के मार्ग निर्धारित किए गए हैं जिसमें एक सामान्य दर्शन का मार्ग रहेगा। सामान्य दर्शनार्थी जो है उनका प्रवेश कर्कराज पार्किंग पे होगा, वहीं पर उनके लिए पार्किंग की सुविधा है, वे अपना वाहन पार्क करके कर्कराज पार्किंग स्थित प्रवेश द्वार से प्रवेश करके भील समाज धर्मशाला।

0: गोंड मोहल्ला, चार धाम हरसिद्धि चौराहा और बड़ा गणेश होते हुए द्वार क्रमांक 4 से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद विश्राम धाम होते हुए श्री नाग चंदेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे तथा प्रीपेड बूथ से बाहर निकलेंगे। निकासी के पश्चात वे श्रद्धालु 24 खंबा रोड से होते हुए पुनः कर्कराज पार्किंग की ओर प्रस्थान करेंगे। और वहीं हम शीघ्र दर्शन की यदि बात करते हैं तो शीघ्र दर्शन हेतु श्रद्धालुगण हैं उनका प्रवेश हरसिद्धि पाल की ओर से निर्धारित किया गया है। वहां पर हमारे शीघ्र दर्शन काउंटर है जहां से वे टिकट प्राप्त करके बड़ा गणेश मार्ग से होते हुए प्रवेश द्वार क्रमांक 5 से करते हुए विश्राम धाम होते हुए श्री नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और दर्शन उपरांत वे भी प्रीपेड बूथ से निकासी कर 24 खंबा होते हुए पुनः हरसिद्धि पाल की ओर जाएंगे। ये तो नाग चंद्रेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था हो गई। इसके साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन व्यवस्था भी चलेगी जिसमें भी हमारे दो प्रकार के दर्शन हैं। एक हमारा सामान्य दर्शन जिसमें श्री महाकालेश्वर भगवान के सामान्य दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का प्रवेश त्रिवेणी संग्रहालय स्थित त्रिवेणी प्रवेश द्वार से होगा। श्रद्धालु नंदी द्वार होते हुए मानसरोवर फैसिलिटी, गणेश मंडप एवं कार्तिक मंडप से दर्शन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। दर्शन उपरांत एम्बुलेंस गेट से निकासी करते हुए पिनाकी द्वार से बाहर जाएंगे। और शीघ्र दर्शन की जो व्यवस्था है उसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश नीलकंठ द्वार से निर्धारित किया गया है जहां पर बने टिकट काउंटर से वे टिकट प्राप्त करके जो है मानसरोवर से आगे बढ़ते हुए गणेश मंडप कार्तिक मंडप के मार्ग से दर्शन करके आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की जो वेबसाइट है www.mahakaleshwar.mp.gov.in उसके माध्यम से भी श्रद्धालु ऑनलाइन टिकट शीघ्र दर्शन के प्राप्त कर सकते हैं और बताए गए निर्धारित मार्गों से मंदिर में प्रवेश करके दर्शन लाभ ले सकते हैं।
1: नाग पंचमी पर सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं पूरे उज्जैन में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ती है। बाहर से आने वाले वाहन, स्थानीय यातायात और बड़ी संख्या में पैदल श्रद्धालु, ऐसे में यातायात व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी के अवसर पर उज्जैन यातायात पुलिस ने क्या प्रबंध किए हैं, आइए जानते हैं DSP ट्रैफिक पुलिस उज्जैन श्री दिलीप सिंह परिहार से।
2: सोमवार 17 अगस्त को नाग पंचमी का त्यौहार भी है और महाकालेश्वर की सवारी भी है और इस अवसर पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है उज्जैन में। इस दिन जो है सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने 3 चरण की यातायात व्यवस्था बनाई है जिसमें सबसे पहले जो है भारी वाहनों का डायवर्सन है। भारी वाहनों का डायवर्सन हमने तपोभूमि और इधर मोहनपुरा तरफ से करी है जिससे जो है बड़नगर बाईपास होकर के भारी वाहन आगर के लिए और उन्हेल नागदा के लिए जा सकेंगे। इसके बाद जो चार पहिया वाहन है तो इनमें जिनको शहर की तरफ जाना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पाइप फैक्ट्री से तरनताल होते हुए जो फ्रीगंज वाला जो रास्ता है उसमें होकर के शहर की तरफ जा सकते हैं और जिनको मंदिर की तरफ जाना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से महामृत्युंजय द्वार, आस्था तिराहा और हरी फाटक होकर के कर्कराज पार्किंग की ओर जाएंगे। क्योंकि कर्कराज पार्किंग सीमित वाहनों की लिए है इसलिए उसके भर जाने पर जो है हरी फाटक चौराहे पर जो पार्किंग है वहां पर वाहनों को पार्क कराया जाएगा। यदि ये भी पार्किंग भर जाती है तो इसके बाद आस्था तिराहा से उनको सिंहस्थ बाईपास की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा जहाँ से मोहनपुरा ब्रिज होकर के शंकराचार्य से कार्तिक मेला मैदान की पार्किंग में जाकर के अपना वाहन पार्क करके और वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही जो है उनको दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो है ये भी ध्यान रखा गया है कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको विशेष असुविधा भी ना हो।
1: नाग पंचमी की रात नाग चंद्रेश्वर के कपाट खुलते हैं, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और लौट जाते हैं। कुछ घंटों बाद कपाट फिर बंद हो जाते हैं लेकिन आस्था वो बंद नहीं होती, वो अगले वर्ष तक चलती रहती है क्योंकि मंदिर एक दिन खुलता है लेकिन आस्था पूरे वर्ष खुली रहती है। नाग चंद्रेश्वर शिव और नाग के उस अद्भुत संबंध का प्रतीक है जहां भय भी है, अभय भी, रहस्य भी है, श्रद्धा भी और सबसे बढ़कर शिवत्व।
3: अभी आपने सुनी नागचंद्रेश्वर मंदिर के आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्व से जुड़ी विशेष वार्ता। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, इस

पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और अपने शीश तथा आभूषणों में स्थान दिया। माना जाता है कि नागपंचमी के दिन स्वयं सर्पराज तक्षक यहाँ उपस्थित रहते हैं, इसलिए आज के दिन यहाँ की गई पूजा और दर्शन का फल अनंत गुना हो जाता है। आइए इसी पावन संकल्प के साथ सुनते हैं अगला शिव भजन।

श्रोताओं, नागपंचमी पर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में महानिर्वाणी अखाड़े के महंत और पुजारियों द्वारा विशेष त्रिकाल पूजा की जाती है। सबसे पहले रात्रि 12 बजे शासकीय पूजा होती है, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। वहीं मंदिर की स्थापत्य कला और इसकी प्राचीनता हमें

की स्वर्णिम इतिहास और परमार कालीन वास्तुकला की याद दिलाती है। आस्था का ये ऐसा केंद्र है जो युगों युगों से उज्जैन की पहचान बना हुआ है और इसका आध्यात्मिक चेतना का स्तंभ बना हुआ है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत भक्ति गीत।

श्रोताओं, आज नागपंचमी के अवसर पर हमारी उज्जैनी में लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिप्रा नदी में स्नान करके भक्त बाबा महाकाल और भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए पंक्तियों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन और नगरवासियों के सहयोग से ये यात्रा सुगम और अनुशासित बनी हुई है। हमारी अवंतिका नगरी का यही सौंदर्य है कि हर त्यौहार को एक महापर्व बना देती है। बाबा नागचंद्रेश्वर से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि रक्षा और शांति बनाए रखें। आइए इस दिव्य यात्रा के समापन की ओर बढ़ते हुए सुनते हैं आज का ये अंतिम और कालजयी भजन।

और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें। उज्जैन दर्शन के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब अपनी उद्घोषिका हिमानी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। FM 102.5 MHz पर प्रस्तुत है सखियों का खास कार्यक्रम महिला सभा।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम महिला सभा में। सखियों, जैसा कि आप जानती हैं, आज का दिन बहुत खास है। आज नाग पंचमी है और हमारे उज्जैन में तो ये पर्व और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि साल भर में सिर्फ एक बार आज ही के दिन महाकालेश्वर मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। क्या आप जानती हैं, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवजी सात मुख वाले शेषनाग तक्षक के साथ विराजे हैं। तो सखियों, आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के महत्व के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे अपनी यानी महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और चर्चा करेंगे उज्जैन शहर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना मंगल से मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सॉन्ग के साथ।

फिर से स्वागत है आपका महिला सभा कार्यक्रम में। एक सवाल है आपके लिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी खास वजह के आपको बहुत थकान महसूस हो गई हो, अचानक मीठा खाने की इच्छा हुई हो, नींद ठीक से न आई हो, या छोटी सी बात पे गुस्सा या उदासी आ गई हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आपका शरीर आपसे बात कर रहा हो, आपको कुछ मैसेज दे रहा हो। सखियों, आज हम महिलाओं के शरीर के उस हिडन रिमोट कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा मूड, हमारी एनर्जी, हमारी स्किन और यहाँ तक कि हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हॉर्मोन्स की। चलिए शुरुआत एक ग्लोबल फैक्ट से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं का बायोलॉजिकल क्लॉक और स्ट्रेस रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है? हाल ही में आई ग्लोबल हेल्थ 50-50 की एक रिपोर्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि दुनिया भर में महिलाओं का शरीर पुरुषों के मुकाबले स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन अगर हम भारत और पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका या यूके की महिलाओं के बारे में बात करें, उनकी तुलना करें, तो लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। वेस्टर्न कंट्रीज में महिलाओं में मेनोपॉज की एवरेज जो एज है वो 51 साल है और भारत में ये 45 से 47 साल है। WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 8 से 13% महिलाएं PCOS से प्रभावित है, लेकिन जब हम भारत का रुख करते हैं तो आंकड़े डराने वाले हैं। भारत के मेट्रो शहरों में हर 5 में से एक महिला यानी करीब 20% इस हार्मोनल असंतुलन से जूझ रही हैं। लंदन इंपीरियल कॉलेज की एक रिसर्च बताती है कि रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, चीनी, प्रोसेस्ड फूड और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण एशियाई महिलाओं के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि भारत की युवा लड़कियों में अचानक वेट बढ़ना, फेशियल हेयर आना, ऐसे लक्षण आजकल बहुत दिखने लगे हैं। लेकिन बहनों, बात सिर्फ शारीरिक नहीं है, हॉर्मोन्स का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठी कॉरपोरेट वुमन हो या भारत के किसी शहर या गांव में घर संभाल रही माँ, आपके हॉर्मोन्स आपके दुश्मन नहीं है, आपकी सुपर पावर है, बस जरूरत है इन्हें समझने की। तो हॉर्मोन्स की भाषा समझने के लिए क्या करें? सिंपल है, एक डायरी या मोबाइल ऐप मेंटेन कीजिए, उसमें सब कुछ नोट कीजिए, अपना मूड, ब्लीडिंग पैटर्न, पेन। इसके साथ ही अच्छी डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज, इन्हें रेगुलर करके तो देखिए। और हाँ, कद्दू और सूरजमुखी के बीज भी बड़े काम के हैं। लेकिन ज़्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि जब आप खुश होती हैं तो पूरा घर भी खुश रहता है। कुमार विश्वास जी ने कहा भी है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। इसी बात पर आइए अब हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सपना मंगल से, लेकिन पहले वक्त है एक खूबसूरत ट्रैक का।

0: तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर सपना मंगल जी से।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन के महिला सभा कार्यक्रम में।
2: थैंक यू श्वेता जी।
1: पहला सवाल है, हमारी श्रोता ये समझना चाहेंगी कि मेनोपॉज वास्तव में क्या है और अमूमन इसकी शुरुआत किस उम्र में होती है और इसके बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं।
2: मेनोपॉज होता है एक साल तक, 12 महीने तक किसी को पीरियड ना आए, महावारी ना आए, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ये हमारी जिंदगी का, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक न्यू फेज ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं जो 45 से 55 वर्ष की महिलाओं में होता है। और इसमें बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि जो ओवरीज हैं उनमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत इफेक्ट करती है। इससे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं।
1: बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे पेरीमेनोपॉज के दौर में है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, इनमें डिफरेंस क्या है और शुरुआती संकेत क्या है पेरीमेनोपॉज के, जिन्हें महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए?
2: पेरीमेनोपॉज होता है मेनोपॉज के पहले का समय, तो 45-46 साल से जो होता है वो लगभग सभी का पेरीमेनोपॉज वाला पीरियड शुरू हो जाता है। पेरीमेनोपॉज में बहुत सारी चेंजेस होती है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है महिलाओं को, फिर उनको कुछ इमोशनल डिस्टरबेंसेस भी लगते हैं, जैसे कुछ डिप्रेसिव फीलिंग्स भी आती हैं। इसके अलावा उनका वेट गेन हो सकता है, फिर उनकी महावारी अनियमित, या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा, कुछ इस तरह से भी हो सकती है। थायराइड डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं उनको, हार्ट या शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट पेन्स वगैरह हो सकते हैं, और उनको नाइट स्वेट्स, मतलब क्या होता है रात में एकदम घबराहट के साथ पसीने आना और धड़कन तेज चलना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये इन सब साइंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत गायनिक से सलाह लेना चाहिए। ये मेनोपॉज का एक नॉर्मल पार्ट है, मतलब ये सिम्टम साइंस होते ही है।
1: अगला सवाल है कि एक स्टडी के अनुसार करीब 80% महिलाएं हॉट फ्लैशेस का शिकार होती है, तो हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स, इनसे निपटने के लिए क्या केवल दवा ही समाधान है या ऐसा कुछ लाइफस्टाइल, डाइट और मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ हम रणनीतियां अपनाएं तो उससे निपटा जा सकता है?
2: हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, ये सब हो रहे हैं ईस्ट्रोजन की कमी से
1: जी।
2: तो एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो हम अपनाएंगे ही, मेडिटेशन जो सब मैंने बताया, इसके अलावा खाने में फाइटो ईस्ट्रोजन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे सोयाबीन्स हैं, लेंटिल, सारी दालें हैं, ये सब जो है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सारी फ्रूट सारे अपने डाइट्स में हम शामिल कर सकते हैं। फिर एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करके आते हैं जो कैप्सूलर फॉर्म में भी आते हैं, या फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स वगैरह जो आती है, बहुत सारी चीजें आजकल जो हम गूगल पे सर्च करेंगे हमको मिल जाएंगी जो रिच सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन, फाइटो ईस्ट्रोजन होती है, ये अपनी डाइट में शामिल करें हम। और जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज वगैरह ये सब हम करेंगे तो हमें मूड स्विंग से 80% रिलीफ मिल सकता है, 80-90%, मतलब 4-5% महिलाएं ऐसे होंगी जिसको हमें मूड स्विंग्स के लिए कुछ मेडिसिन या फिर कुछ एस्ट्रोजन प्रिपरेशंस देने पड़ते हैं हमको।
1: मेनोपॉज के बाद अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
2: मेनोपॉज से डेफिनेटली हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इसके लिए एक तो रेगुलर बीएमडी टेस्ट होते रहते हैं, हमारे सिटी में भी होते रहते हैं, जिसमें हम बोन की हमारी डेंसिटी कितनी है वो पता लगता रहता है, तो ये तो टेस्ट करवाएं। साथ में हम कैल्शियम रिच खाना मतलब दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, विटामिन डी धूप में मिलता है, इसके अलावा विटामिन डी प्रेपरेशन आते हैं बाजार में जो हम गायने के डॉक्टर की सलाह से लें, तो उससे हम हमारा हड्डी को जो फ्रैक्चर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, तो उससे बचा जा सकता है। बाकी हम बोन्स को हेल्दी करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज तो मैं बार बार बोलूंगी हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी।
1: आपने बताया अक्सर हड्डियों की तो मैम बात होती रहती है, लेकिन क्या मेनोपॉज के बाद हार्ट हेल्थ पर भी असर होता है, और क्या ये सच है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, और इससे बचाव के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
2: हृदय रोग का खतरा बिल्कुल बढ़ जाता है मेनोपॉज

0: क्योंकि एक तो एज ग्रुप भी वो 50 के आसपास है, जब हृदय रोग का खतरा रहता ही है, फिर हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म पूरा इफेक्ट हो रहा है, तो हृदय रोग है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ जाएंगे। इसके लिए हमको जो मैंने बोला ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप्स और एक्सरसाइज वॉकिंग, यही बोलूंगी यहाँ पर। डेफिनेटली हमें हार्ट हेल्थ का अपने ध्यान रखना ही पड़ेगा, रेगुलर ईयरली चेकअप्स होने चाहिए मेनोपॉज में सभी महिलाओं के। जी
1: मेरा अगला सवाल है, मेनोपॉज केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं है जैसा आपने बताया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव का भी दौर है। तो महिलाएं इस चरण को डर या तनाव के बजाय सकारात्मक और आत्मविश्वास के साथ कैसे स्वीकार कर सकती हैं?
0: मेनोपॉज का यही बोला मैंने कि ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का मतलब हमारी लाइफ का एक पड़ाव है, या फिर ये समझने की एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। तो जो भी सिम्टम्स हमने बताए आते हैं, तो महिलाओं को अकेले में सफर नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें डरना नहीं चाहिए, या उन्हें फैमिली से पहले तो आगे आके शेयर करना चाहिए सबकी, भाई ये सब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और फैमिली से भी हमारा ये कहना है कि उनको इस पीरियड में सपोर्टिव रहना चाहिए उस महिला के लिए जो मेनोपॉज से गुजर रही है, पर्टिकुलरली जो टीनेजर बच्चे हैं उनको भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और जो जो उनसे सीनियर है, जो उनकी मदर इन लॉ या मदर है जो इस फेज से निकल चुकी हैं, उनसे उनको ये सब डिस्कस करना चाहिए, और उन लोगों को भी, मदर इन लॉ और मदर को भी आगे आके उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए जो मेनोपॉज से गुजर रही है। तो मेनोपॉज में कभी भी आप उसको साइलेंस में ना रहें, सफर ना करें, आगे आए, घर के लोगों के साथ शेयर करें, अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें।
1: यह हमारा सेगमेंट है मिथ्स और उसके रियलिटीज। तो मैम, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जो कॉमन मिथ्स हैं और सच्चाई क्या है वो आप प्लीज शॉर्ट में बताइए। मेरा पहला सवाल है, मेनोपॉज का मतलब क्या आप बूढ़े हो गए हैं?
0: मेनोपॉज जो है वो हमारी जिंदगी का एक पड़ाव है, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसको कभी भी ये हमें ओल्ड होना नहीं समझना चाहिए।
1: मेरा अगला सवाल है, क्या हॉट फ्लैशेस ही मेनोपॉज का ओनली सिम्टम है?
0: मेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लश इनमें से एक है। इसके अलावा जॉइंट पेन्स, हार्ट का प्रॉब्लम है, हड्डियां कमजोर होना है, वेट गेन होना है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं।
1: मैम, हार्मोन थेरेपी जो होती है तो ऐसा माना जाता है कि वो अच्छी नहीं होती और हर महिला को उससे बचना चाहिए।
0: हार्मोन थेरेपी डॉक्टर तभी देता है जब बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और ये आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन्स आने लगी हैं। तो एस्ट्रोजन के पैचेस आते हैं, पैच हम बॉडी पे लगा दें तो हफ्ते भर तक एस्ट्रोजन बॉडी में जाता रहेगा, या तो कुछ क्रीम्स होती हैं जो स्किन पे मल लो तो स्किन से अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें दवाई के रूप में ही उसको गोली के रूप में लेना पड़े, बहुत अच्छे ऑप्शंस आजकल हैं, और वो सिर्फ गायनेक की सलाह पे ही लेना चाहिए।
1: जी मैम, अगला सवाल है कि क्या मेनोपॉज के दौरान ब्रेन फॉग जो होता है तो वो डिमेंशिया की शुरुआत है क्या?
0: डिमेंशिया नहीं है ये ब्रेन फॉगिंग है, जो कि आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण हो रही है, और ये समय रहते ठीक हो जाती है, तो इसे डिमेंशिया नहीं माना जा रहा।
1: जी, क्या मेनोपॉज एक बीमारी है?
0: मेनोपॉज एक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से महामारी शुरू हुई थी उस तरह से महामारी अब जा रही है, तो ये फेज ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: मेरा आखिरी सवाल है मैम, पीरियड्स बंद हो गए तो अब हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है?
0: पीरियड्स बंद होने के बाद हमारी बॉडी में, चूंकि अब पूरा मेटाबॉलिज्म बदल रहा है, तो हमें ज्यादा ध्यान देना है बॉडी पे, ईयरली चेकअप्स कराने हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब देखना है, क्योंकि मेनोपॉज में ये सारे बदलाव आते हैं, इनको हमें नजरअंदाज नहीं करना।
1: मैं हमारी आकाशवाणी की महिला श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या होगा?
0: एक नारी होने के नाते, चूंकि मैं भी अभी मेनोपॉज से गुजर रही हूँ, तो मैं हर रोज जब भी अपने आप को आईने में देखती हूँ, तो मैं अपने आप को और दिन ब दिन स्ट्रांग फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो यही कहना है कि मेनोपॉज हमारे जीवन का एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जानकारी, जागरूकता और सही देखभाल से हम इस मेनोपॉज को एक स्वस्थ अवसर बना सकते हैं हमारे जीवन का जीने के लिए। थैंक यू।
1: सपना मंगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की।
0: धन्यवाद श्वेता जी।
1: सखियों, आगे करेंगे नागपंचमी से जुड़ी कुछ रोचक चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

सखियों, नागपंचमी हमें केवल नागों की पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि ये समझना भी सिखाती है कि प्रकृति का हर जीव अपने भीतर एक गहरा संदेश लेकर आता है। अब एक प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में नागों के 8 प्रमुख कुल माने गए हैं? इनमें से शेषनाग धारण शक्ति के प्रतीक हैं, वासुकी समुद्र मंथन में सहयोग के, और तक्षक कर्मफल और परिवर्तन के प्रतीक माने गए हैं। भारतीय परंपरा में नागों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है, धन के रक्षक। पुराणों में नागों को पाताल और भूमिगत निधियों का संरक्षक माना गया है। कई मंदिरों और प्राचीन स्थलों पर हम नाग प्रतिमाएं देखते हैं। वे इस विश्वास का प्रतीक है कि धरती के भीतर छिपी संपदा, जल, खनिज और उर्वरता की रक्षा नाग करते हैं। यदि इस प्रतीक को आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये कितना अद्भुत है। धरती के भीतर का धन केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि भूजल, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता भी तो है। अब विज्ञान की बात करें, सांप किसानों के सबसे बड़े प्राकृतिक मित्रों में से हैं। वे खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित करते हैं। अगर सांप न हो तो चूहे तेजी से बढ़ जाएंगे और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इकोसिस्टम में सांप फूड चेन का एक खास हिस्सा है। वे शिकारी भी हैं और कई जीवों का भोजन भी, यानी वे प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने वाली एक कड़ी हैं। और एक मजेदार फैक्ट, सांपों का विष केवल खतरा नहीं, औषधि का स्रोत भी है। आधुनिक चिकित्सा में भी कुछ स्नेक वेनम से ऐसी दवाएं बनी हैं जो बीपी, ब्लड क्लॉटिंग और कुछ नर्व संबंधी रोगों में बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई हैं। तो क्या नागपंचमी केवल पूजा का पर्व है? यह हमें ये याद दिलाता है कि जिस जीव से हम डरते हैं वही हमारी खेती, पर्यावरण और चिकित्सा के लिए उपयोगी हो सकता है। यही नागपंचमी का सबसे बड़ा संदेश है। इसी संदेश के साथ आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। आप हमसे इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अपने कॉमेंट्स हमें जरूर बताइए और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर लिखें। हमारा पता है आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, पिन 456010। अपनी रेडियो मित्र श्वेता को अनुमति दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होगा।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

अनुप जलोटा, संजय राज की आवाजों में आपने सुना नलिन वर्मा का लिखा ये भजन। सचिन सतीश ने इसे संगीत से सजाया था। एल्बम शिव शंकर देवाधिदेव, इस एल्बम से हमने इस भजन को आपके लिए सुनवाया।

0: शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे भजन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, महेंद्र दहलवी के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बैजू मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में कबीर दास का लिखा ये भजन आप सुन रहे थे, मन मस्त कबीरा। इस एल्बम से बैजू मंगेशकर ने ही इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, करसन सगार्थिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा, स्माइल दरबार का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत। फैज अनवर ने इसे लिखा है, संदेश सांडिल्य का संगीत।

0: जा।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे

0: सिर्फ विविध भारती पर
1: सेहतनामा।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।

0: कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

इब्राहिम अशक का कलाम आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में मोहब्बत इस एल्बम से, इसलिए भूपिंदर सिंह का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। वाणी जयराम की आवाज में सुनते हैं ये गजल, और इसे परवाज एल्बम से हमने लिया है। दानिश बरेलवी ने इसे लिखा। मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: शमीम जयपुरी का ये कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सैगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सैगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सैगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं।

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।
2: तुमने वो क्या देखा

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे

0: सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल ध्यानवी के बोल, खयाम की तर्ज़।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: खड़ी हो गई।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: अब कहां जाएं हम?
5: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
5: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ज्वेल थी। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे, न झूठी मुस्कान धरो। भले ना रखो अभिमान, पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी, फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो, कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे, न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें, हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कहने कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे एक साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो, बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं। देवनागरी में लिखा है ये और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा

पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं, आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं? कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरह से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूं। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल न दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है? हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर इसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और जरूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज।

0: बात, क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज की इबारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्म सम्मान और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं। तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस खास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे, ये हमें बताइए। और तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का, अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे

रहता रहे।

0: कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूँ उससे। और हमारे साथी कहती हैं कि चार दिन की जिंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहां ठीक है जहां रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी एक और साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी अपने रास्ते पर चलना आजादी है और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं, फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज। हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है। और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत। आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपकी लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपकी लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपकी लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लीजिए, अब अपने लीजिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है। उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही है कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे। कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे एक साथी कहने की लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल की सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हो, ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने दी।

है नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया, और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक

आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं, और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निक्के निक्के से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटी सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। भाई ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए, लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है तो वो क्या है, हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज की भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूं, उनके साथ खेलती हूं। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नज़र में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी ना कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन में क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीजें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो जरूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए, 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते कोई गीत गा रहे तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहने है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में, मन के हारे जीत।

है, मामन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूं। भाई क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन के कब करेंगे हम, अपने मन की बात नहीं कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिए। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने की, अगर एक दिन का स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नगीना फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के समापन पर आज कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा इस मौके पर निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वयं तिरंगा लहराकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थ बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट पहनकर अपने वाहनों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा वाहन यात्रा की शुरुआत कमिश्नर कार्यालय से हुई, जिसके बाद ये काफिला कंट्रोल रूम तिराहा, जेल रोड, एमपी नगर थाना तिराहा और शौर्य स्मारक, रोशनपुरा चौराहा, बाणगंगा तथा पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए रेत घाट की ओर रवाना हुआ। इसके बाद यात्रा ने वीआईपी रोड, करबला और लालघाटी चौराहा पहुंचकर शहर के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। लालघाटी से यात्रा वापस वीआईपी रोड की ओर मुड़ी और रेत घाट, कमला पार्क और लोक भवन होते हुए वापस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही हैं। आगरमालवा जिले के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव के रूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी आज शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से निकाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आरती के बाद तीसरे सोमवार उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के संयोग पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट कल रात 12 बजे खोले गए, जो 24 घंटे तक खुले रहेंगे। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की नागराज की फणों के नीचे विराजमान दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। अभी तक कई लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सावन सोमवार पर महाकाल मंदिर के पट के 2:30 बजे खोले गए और भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। आज नई दिल्ली में सार्वजनिक बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। नीति तय करने में विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विकसित भारत की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही हैं। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संत गुरु रविदास जी के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में छिंदवाड़ा जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well-researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के 3rd सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की

0: भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
1: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
2: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
1: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
4: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री

शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार समाप्त हुआ नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाए हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

0: तुम सा नहीं देखा, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नग में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत, फिल्म पेइंग गेस्ट। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।
1: ओ, ओ, ओ, निगाहें मस्ताना

मस्ताना। किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, है ना? आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम
0: किया जाए। और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है क्योंकि आज तेतर भाग दो आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल।
0: और आप क्या करें,
1: बाहर तो आज बारिश हो रही
0: झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टूपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक सी संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलमुही नहला।

0: आते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
1: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
2: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला। हाँ
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ

0: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूं। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं है? अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
1: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे?
0: हाँ तो क्या मुझे पागल समझती है तू? हाँ पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
1: सही कह रही हैं। भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
2: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
0: बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, ना बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
2: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
3: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब मां बाप क्या मर जाते हैं।
2: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
3: अरे अम्मा क्या हुआ,
1: अरे
3: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया?
1: अरे आ गए आप, देखिए ना, अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
0: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचूंगी, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान।
1: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
3: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत?
0: हाय अरे बेटा, भगवान साफ करते हैं। हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
3: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूं।
0: अरे नहीं बेटा, रहने दो सब, अब अच्छा हुआ मेरे सिर आई है। हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तो मेरे ही से सही। हाँ बेटा अब ना बचूंगी। हाँ

0: अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म। हाँ कह देती हूँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ मेरे सिर आया, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
1: अम्मा अम्मा, अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं? अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम।
0: अरे कहाँ जाते हो? अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है? डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, हाँ 10-20 वो भी ले जाएगा मेरा। डॉक्टर पैसे, कुछ ना होगा कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा। तुम बस मेरे पास बैठ जा बेटा, बैठकर भागवत पढ़ो। हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी। पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ कह देती हूँ।
1: तेतर तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
2: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो बेटा, नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता, राम राम। अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है तुम सब खुश रहो। हाय हाय अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर, खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
3: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो मां के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
2: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
0: ए बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी अन्न के बिना ना मारो, है भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ जाओ थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना, अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? हाय बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी, अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है बड़ा दर्द है भैया।
3: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया।

0: एक ने कहा।
1: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
2: हाँ हाँ सही कहती हो, तैतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तैतर ना दे।
0: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
3: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
5: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्यौहार मन रहा है।
4: बिल्कुल।
5: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्यौहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है।
4: बिल्कुल। और सुनाली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
5: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
4: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
5: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
4: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
5: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद।
4: जी।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नाग पंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वही सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नाग पंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो बनेंगे

0: प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
1: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में, और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
0: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना, और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
1: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: बच्चे हैं। और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों के पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है तो वो तो उन्हें इजी है और चटपटा स्वादिष्ट है।
0: चटपटा स्वाद है। और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो कितना अच्छा है।
1: और फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो,
0: ऐसा क्यों करते हो। बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है
1: या फिर ना के बराबर होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। अच्छा बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के द्वारा जा रहा है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
1: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: आजकल के बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है, हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाते।
0: सोनाली पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं जहां छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध दांत भी अभी गिरे नहीं है उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
1: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए,
0: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार है। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे श्रोता, सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स, खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल हैं, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उस पे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक

0: का पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था, भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है,
0: बहुत अच्छी
1: मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
1: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ, इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है, रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहिणियों को भी आराम मिल जाता है।
0: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए, इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते, उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटी मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर रखें।
1: वहीं एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है, रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं, कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है, अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है। वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
0: और हाँ
1: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टियों में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
1: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: भाई दिल किसी पे भी आए ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस
1: है ना, मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी अगोट, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले, एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले, कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले, दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे, अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे। मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियों, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम, प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी छोटी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए, हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ, तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। पर हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही।
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध

0: हार्दिक के स्टूडियो में
1: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
0: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है सबसे पहले तो ये बताइए।
1: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
0: जी जी।
1: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
0: सारा दिन बैठे,
1: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं।
0: जी।
1: अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
0: बिल्कुल।
1: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज़ मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
1: हाँ।
0: इस बारे में बताइए।
1: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है, और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है,
0: जो
1: दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन, तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन। मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक।
0: तो वो पूरा साल,
1: हाँ, साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है। आई कॉल इट लाइक,
0: मतलब क्या होता है,
1: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है,
0: अखबारों में हम पढ़ते हैं।
1: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो हैं जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है। और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
0: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है।
1: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर

0: अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। या मैनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
1: यानी जब आग लगती है तभी
0: हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है। पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया। तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते। देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी।
1: जी,
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना। मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं।

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी।
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50-60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन

0: ज्यादा होने के वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं
1: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
0: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है
1: जी।
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात
0: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
0: सही मात्रा
1: है ना,
0: और वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस Not too much.
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए
1: जी। आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था बट पोरोसिस भी,
1: हाँ दोनों चीजें
0: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी, अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
1: डेफिशिएंसी
0: होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप, पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है, मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से,

0: मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है. अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हॉर्मोन रिप्लेसमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड. और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में. अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया, मतलब एकदम थोड़ी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे, तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए. क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है.
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: चाहिए क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है. मोस्ट पीपल आर लिविंग,
1: हाँ, लंबा है, तो जीना.
0: लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं, अच्छा जीवन चाहिए.
1: बिल्कुल सही है. आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप?
0: गुजारिश की गुजारिश करूंगी.
1: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर. तेरा जिक्र है,
0: तेरा जिक्र है,
1: करेक्ट. क्या गाना है,
0: बहुत ही सुंदर.

0: गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं, एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइन करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल, अगर वो आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो
0: मैकेनिज्म भी
1: रिलैक्सेशन की जरूरत है, तभी सब चलता है
0: जी।
1: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
0: Okay.
1: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
0: तो वो एक्टिविटी चेंज।
1: हाँ, अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की।
0: ये
1: अगर
0: तो
1: हम नियम से
0: है।
1: चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
0: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की
1: मुश्किल ही है
0: ना पड़े।
1: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
0: जी,
1: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
0: क्या बात,
1: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला।
0: हाँ।
1: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
0: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं।
1: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
0: जो दोनों एक्सट्रीम है।
1: एक्सट्रीम है।
0: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
1: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989, और तभी तो, लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में, मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी, और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे, मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक जैसे

0: ACL बोला, रोटेटर क्रफ जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है. मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे. रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी. अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था. जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं. तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं. तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है. पहले पेन मैनेजमेंट होता है. अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से. मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी.
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से. अगर पेन मैनेज जब भी होता है, तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे. फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे. क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी.
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट. मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो. अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स. सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है
1: बिल्कुल.
0: तो ये प्रोसेस होती है. अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है
1: जी. तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास.
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो और एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है
1: जी.
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है. एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली. बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए. एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग. जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट. तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज. उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है. उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए
1: जी.
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट. सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट. अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे. और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके. हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा
1: जी जी.
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए 1 महीना या 2 महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है. सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है.
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें
0: और करते रहे उसके बाद.
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है. जैसे मैं बोलती हूँ डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो. ऐसा मत बोलो कि मैं 2 महीने डाइट पे हूँ, मैं 2 महीने एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ. लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है
1: जी. अब हम

0: उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
1: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू

0: साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था. फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज़ के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में. तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने. एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल एंड बहुत सारे किए. तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े. और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन. और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के और ऑफ कोर्स मेरे काम के वजह से भी थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे. मैं ये बोलना चाहूँगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है.
1: अरे गजब.
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है. मेरे क्लिनिक में आते थे. एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है. और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट. तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे.
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 ईयर्स. जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी.
0: मैं कभी उसमें नहीं थी, बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है. और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है. तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन ट्रीटमेंट्स. आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर. या सो या ही इज बीन अ प्लेजर. और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है.
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं. मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप. तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ. और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी. और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर्ड टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज.
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है. एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोज 10 ईयर्स दैट वॉज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल.
1: क्या बात है.
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है. ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं.
1: क्या बात है. तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो, क्या फीलिंग
0: मुझे
1: होती
0: कुछ
1: है?
0: अलग नहीं लगता है. नहीं, सच नहीं लगता है. इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है.
0: तो अच्छा लगता है. दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स.
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स.
0: बट नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी. एवरीबॉडी, चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह,
0: पर मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है. बस वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो मैंने नहीं किया तो कोई और करता था. मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वही प्लेजर देता है.
1: क्या बात है. चूंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए।
1: ठीक है, चूंकि बात

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है,
1: मैं उसको सलाह दे कि अगर उनके पास कोई हो उधर

0: तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो. और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
1: जी
0: हेमिप्लीजिया,
1: बल्कि सर्जरी की बात भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है.
0: हाँ, बहुत
1: सीरियस मैटर है,
0: बहुत है. अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में. तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है. बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है. सर्जरी इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है. मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट, फंक्शन, वो ही नहीं आता.
1: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं.
0: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो. और क्योंकि कई चीजें छोटी है, समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा. अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा.
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है. एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस.
1: जी,
0: मसल इज प्रोग्राम्ड. जैसे मैंने बोला, ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी. अप टू 30 इयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग. 20 टू 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है. ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए. मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है. पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है. तो वीकनेस बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के. तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है.
1: जी,
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स.
1: वो तो बहुत
0: फ्रैक्चर की इसकी डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल. सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है.
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय
0: बहुत
1: है, वो
0: ही
1: बहुत
0: जरूरी है. और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं. एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week used to come to clinic, and 95 he passed away. One day before that also he had requested home visit for exercise.
1: क्या बात है, इतना
0: so some people are really. और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास.
1: वाह वाह.
0: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे.
1: क्या बात.
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते.
1: क्या क्या बात है, क्या बात है. जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ, हाँ, भी हम,
0: वो भी 10 साल आए हमारे पास जस्ट एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज.
1: गजब, क्या बात है. चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं. आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा.
0: यस.

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो।

0: भी पेन हो
1: जी
0: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व.
1: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
0: एक्सरसाइज एंड डाइट इज. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना. हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो. एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए. अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो. जिस दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा.
1: बिल्कुल.
0: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो.
1: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है. डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई. आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर जरूरी बातें बताइएगा.
0: आई एंजॉयड, थैंक यू.
1: शुक्रिया.
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप हमें FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है आपके लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी का, जहाँ गूंजती है युवा मन की बात और युवा प्रतिभाओं की सौगात। तो शामिल हो जाइए हमारे इस सफर में।

0: नमस्कार। महाकाल की पावन और ऐतिहासिक नगरी के सभी श्रोताओं का आकाशवाणी उज्जैन के आपके अपने सबसे पसंदीदा और धमाकेदार कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आशुतोष
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। आप सभी श्रोताओं को नागपंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशुतोष, आज मुझे हवा में एक अलग ही त्योहारों वाली खुशबू, हलचल और बचपन के दिनों की मीठी सी याद महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो आज की शाम किसी बहुत ही रंग बिरंगे सफर पर निकलने वाली है।
0: तुमने बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है जो हर किसी को सीधे उसके बचपन की गलियों में ले जाएगा और चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान बिखेर देगा। दोस्तों, आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम का हमारा बेहद खूबसूरत और विचारणीय विषय है, कैसे होते हैं आपके शहर के मेले।
1: वाह आशुतोष, मेला यह एक ऐसा जादुई शब्द है जिसे सुनते ही आंखों के सामने वो रंग बिरंगी चकाचौंध, आसमानी झूलों की ऊंचाइयां, बच्चों के हाथ में बजने वाले वो प्लास्टिक के भोंपू, गुलाबी बुढ़िया के बाल या कॉटन कैंडी जिसे कहते हैं, और कढ़ाई में छंदी वो गर्मा गर्म जलेबियों की महक।

0: करने लगती है।
1: सचमुच प्रतिभा, अगर व्यवहारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो मेले में हमारे स्थानीय शिल्पकारों, कुम्हारों, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले और छोटे व्यापारियों के लिए साल की सबसे बड़ी रोजी रोटी का जरिया होता है। यह वो जगह है जहाँ गांव और शहर की संस्कृतियाँ बिना किसी औपचारिकता के आपस में बड़े प्यार से गले मिलती हैं।
0: और आशुतोष, हम सबके पास मेलों की अनगिनत यादें होती हैं। वो मम्मी पापा की उंगली पकड़कर भीड़ में चलना ताकि कहीं खो ना जाए, गुल्लक के पैसे बचाकर मौत का कुआं, या वो जादू का शो देखने का रोमांच, और दोस्तों के साथ वो चाट पकौड़ी की पार्टी। आज हम अपने प्यारे श्रोताओं से उनके शहरों और कस्बों के उन्हीं अनेक अनोखे मेलों की दास्तां सुनना चाहते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आपके इलाके का सबसे मशहूर मेला कौन सा है। बचपन में मेले में आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या हुआ करती थी? क्या आपने कभी मेले से कोई ऐसी अनोखी चीज खरीदी जो आज भी आपके घर में सहेज कर रखी है, या फिर मेले में खो जाने या झूला झूलने का कोई चुलबुला किस्सा आपके पास हो?
0: तो फिर देर किस बात की दोस्तों, उठाइए अपना फोन और तुरंत हमारे साथ लाइव जुड़कर अपने शहर के मेले की रौनक और अपनी यादें हमारे साथ साझा कीजिए। फोन लाइंस पूरी तरह खुल चुकी हैं।
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा दूरभाष क्रमांक है 4054191, साथ ही उज्जैन का एसटीडी कोड है 0734।
0: नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ दोस्तों, 0734405419।
1: आइए हमारे सबसे पहले श्रोता से बात करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
2: नमस्ते आशुतोष जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूं, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा हूं आशुतोष जी। और प्रतिभा जी, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूं, आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा हूं, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे।
1: प्रेम सिंह जी, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय हमारे बचपन की, हमारी इनफैक्ट आज की यादों से भी बहुत गहरी तरीके से जुड़ा है। हम बात करें मेलों के बारे में। प्रेम सिंह जी, आपके यहाँ मेले कब कब लगते हैं साल में?
2: जी साल में तो मेले लगते हैं, जैसे कि आपको बताऊँ, आज नागपंचमी थी तो आज भी यहाँ पर हमारे गाँव से 3 किलोमीटर दूर मेला लगा है, और वो तो केवल एक दिन के लिए रहता है। वैसे ही ऐसे जब आपको बताऊं, जैसे कि भादो महीने में दशमी का त्योहार आता है ना, उस दिन भी मेला, हाँ विजयादशमी, केवल दशमी होती है वो
0: जी,
2: वहाँ पे भी मेला लगता है। और नागदा शहर में आपको बताऊं, जैसे कि नागदा नाम पड़ा है, उसके लिए पहले एक राजा थे जन्मेजय राजा के नाम से, उन्होंने मतलब उनको बेटे को किसी ने नाग ने मतलब ऐसे डस लिया था, तो उनकी बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने मतलब इतना गुस्से में आकर मतलब पूरे 3 दिन तक केवल नागों का हवन किया। तो उसमें आशुतोष जी और प्रतिभा जी, आपको बताना चाहूंगा मैं, देश दुनिया के नाग खींच कर आकर मतलब उस हवन कुंड में गिरने लगे। ऐसे मतलब बहुत सारे नागों का मतलब 3 दिन तक लगातार हवन चलता रहा, और बहुत सारे नाग की प्रजातियां उसमें खत्म हो गई। और जैसे ही महाकाल बाबा के गले का नाग खींच कर आने लगा, महाकाल बाबा को मतलब पता था कि नागों का हवन हो रहा है नागदा शहर में, तो उन्होंने मतलब फिर वहाँ पे आके उनके राजा जन्मेजय के थे ना, उनके बेटों को जीवित करके फिर उनके गले का नाग और शेष नाग को बचाया।
1: बिल्कुल,
2: उस तरह की मान्यता भी है आज। और आपको आशुतोष जी बताऊँ, जब भी हम जाते हैं ना नागदा शहर में, तो वहाँ पर खुद ऐसा मतलब महसूस होता है, एक बहुत ही बड़ा राख का ढेर पड़ा हुआ है, और अगर उस राख के ढेर को अगर खोदा जाए ना, तो उसमें से छोटी मोटी हड्डियां ही निकलती है।
1: जी जी प्रेम सिंह जी, आपने वाकई बहुत ही रोचक जानकारी हमें दी। हमारे कई सारे श्रोता होंगे जिन्हें जानकारी के बारे में शायद ना पता हो, उन्हें जान के बहुत अच्छा लगा। प्रेम सिंह जी, इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा आपने बताया आज नागपंचमी का मेला भी लगा है आपके यहाँ पे, तो वो किस प्रकार का मेला होता है, उसमें क्या होता है, उसमें झूले होते हैं, क्या आप उसमें जाते हैं, क्या खरीदते हैं आप उसमें?
2: जी जैसे कि उसमें खिलौने की दुकानें होती है, मिठाइयाँ लगती है, मिठाइयों की दुकान लगती है, और फल के ठेले होते हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे किराने के सामान जो होते हैं ना, उनसे मतलब मेला लगाया जाता है। हाँ, झूले नहीं होते हैं उसमें।
0: जी जी, धन्यवाद प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जरूरी और रोचक जानकारी साझा करने के लिए। आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
0: जैसा कि हम बात कर रहे थे आशुतोष, जैसे मेले ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं, और शहर के लोगों को ग्रामीण जीवन की सादगी, आत्मीयता और लोक कलाओं को करीब से देखने का अवसर भी मिलता है, वहीं ग्रामीण उत्पादकों को एक बड़ा बाजार प्राप्त हो।

0: बढ़ाता है या परस्पर संवाद दोनों को समृद्ध भी करता है।
1: बिल्कुल सच कहा प्रतिभा, यह सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान समाज में आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ाता है। जब हम एक दूसरे के जीवन और श्रम को समझते हैं तो समाज में एकात्मता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। यही मेल जोल हमारे देश की विविधता में एकता का आधार है। इसी के साथ आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार,
0: आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं नमिता मिश्रा सिंधवाड़ा से बात कर रही हूँ।
0: नमस्कार नमिता जी,
1: कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ।
1: नमिता जी, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है मेले। हम बात कर रहे हैं जो साल भर में हमारे इलाके में हमारे शहर में मेले लगते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि छिंदवाड़ा में साल में कब कब और कौन से मेले लगते हैं?
2: छिंदवाड़ा में वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन हम लोगों को जो मेला सबसे ज्यादा पसंद है, यदि मैं उसकी बात करूं, तो भुजनिया का जो मेला होता है छिंदवाड़ा में लगने वाला
1: जी,
2: वो मेला हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगता है।
1: नमिता जी, भुजनिया का मेला दरअसल होता क्या है, हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा सा बताइए।
2: भुजनिया का मेला ऐसा होता है कि रक्षाबंधन के अगले दिन भुजनिया का मेला लगाया जाता है। उसमें जो घर घर में भुजनिया है बोई जाती है और उनको लेकर के बड़ी लंबी यात्रा निकाली जाती है और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घोड़े पे सवार होकर हाथी पे सवार होकर के निकलते हैं। आला बनता है, कोई उदल बनता है, कोई मामा, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये मेला देखना।
0: अच्छा, बहुत सुंदर, आपने कुछ नया और हमारे श्रोताओं को बताया।
2: हाँ, मेले में लोग आनंद लेते हैं, मल्ल युद्ध चलता रहता है वहां पर, और चूंकि ये रक्षाबंधन का पर्व आ ही रहा है पास में, इसलिए बहुत अच्छे से ये मेला याद आ गया हमको।
1: नमिता जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप आपके बचपन में जब भुजलिया का मेला या आपके शहर में लगने वाला कोई और मेला अटेंड करती थी, तो उसकी कोई आपको याद हो, कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको हमेशा याद रहे?
2: वैसे हमको सबसे ज्यादा भुजलिया के मेले ही याद रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें छोटी छोटी सी वस्तुएं खरीद करके लेकर आते थे। जो रक्षाबंधन में पैसे हम लोगों को मिलते थे, वो रक्षाबंधन के पैसों से हम लोग उस समय एक एक रुपए दो दो रुपए में फ्रिज खरीद के लाते थे, टीवी खरीद कर लेकर के आते थे। तो ये मेला जो है वो हम लोगों को हमेशा याद रहता है और अच्छा लगता है।
1: जी नमिता जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। नमिता जी, आप हमें ये भी बताइए कि आपको मेले में लगने वाले जो झूले होते हैं उनमें से सबसे अच्छा झूला कौन सा लगता है?
2: जो टोकनी वाला झूला होता है ना
1: जी,
2: वो झूला हमको सबसे ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा अच्छा, बचपन के दिनों में, बहुत ही सुंदर आपने एक बात साझा की। और नमिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और भुजलिया का मेला के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर बात साझा की। बचपन के दिनों में मेले का इंतजार किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता था आशुतोष, और वो अपनी छोटी सी गुल्लक को महीनों तक सहेजना और मेले के दिन उसके सिक्के गिनकर अपनी मनपसंद चीजों की लिस्ट बनाना, और एक अनोखा अनुभव होता था ना अपनी मनपसंद चीजें खरीदना।
1: उस छोटी सी बचत से खरीदी गई लकड़ी की छोटी सी गाड़ी या रंगीन गुब्बारा दुनिया की सबसे अनमोल दौलत लगती थी प्रतिभा। वो अनुभव बच्चों को सीमित साधनों में भी असीम खुशियां तलाशना सिखाता था। बचपन की वो मासूम आदतें हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी किसी वस्तु की कीमत में नहीं, बल्कि उसे पाने के पीछे की भावना और सेटिस्फेक्शन में होती है। सादगी और सीमित इच्छाओं में ही जीवन का असली आनंद छिपा होता है प्रतिभा।
0: बहुत सुंदर। इसी के साथ अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और हमारे साथ जुड़ते हैं अगले कॉलर से गीत के बाद।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए बढ़ते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
5: जी, मैं साक्षी सिजदा ग्राम बछोड़ा कौशल लाभ जिला उज्जैन से बोल रही हूँ।
3: साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। आप पढ़ती हैं, स्कूल में हैं आप?
5: जी हाँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सिक्स्थ क्लास में हूँ।
3: सिक्स्थ क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है। आज सोमवार सवारी की वजह से छुट्टी होगी, आप घर पे होंगे?
5: जी नहीं।
3: ठीक है साक्षी जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, हमारा विषय है मेला, हम मेले के ऊपर बात कर रहे हैं। तो साक्षी जी, आप हमें ये बताइए कि जब हम मेले में जाते हैं तो आपको सबसे अच्छा क्या खाना पसंद है मेले में?
5: कचौड़ी।
3: कचौड़ी पसंद है? अरे वाह, और भी कुछ पसंद है आपको मेले में खाना?
5: जी पानी पतासे और कचौड़ी और पोहे।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है साक्षी जी।
4: और कौन सा झूला झूलना पसंद है आपको?
5: क्या सर?
4: कौन सा झूला झूलना पसंद है आपको?
5: चक्री वाला।
3: चक्री वाला, अरे वाह साक्षी जी। साक्षी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि मेले में बहुत सारे खेल खिलौने, बहुत सारी काम की चीजें सब मिलता है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आप क्या लेना चाहती हैं जब भी आप मेले जाती हैं?
5: जी मैं डॉक्टर के खिलौने लेना चाहती हूँ।
3: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
5: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ इसलिए।
3: बहुत बहुत अच्छी बात है साक्षी जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। साक्षी जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम युवाणी में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।
4: कितनी सुंदर बात साझा की। और बचपन के दिनों में मेले का इंतजार किसी बड़े त्यौहार से तो कम नहीं होता था, और मेले की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वह हमारी मिट्टी से जुड़े पारंपरिक हुनरमंदों कारीगरों का सबसे बड़ा मंच होता है। जब हम दूर दराज के गांवों से आए लोगों, कुम्हारों या शिल्पकारों के बनाए मिट्टी के बर्तन दिए या लोहारों और बुनकरों के पारंपरिक हस्तशिल्प देखते हैं, तो हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व होता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। मेले हमें यह व्यावहारिक सीख देते हैं कि हमें स्थानीय कारीगरों और छोटे हुनरमंदों का सम्मान करना चाहिए। जब हम उनसे चीज़ें खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि उनकी आजीविका और हुनर को संबल देते हैं। यह सकारात्मक सहयोग हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और कला को जीवित रखता है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
6: जी नमस्कार, जय श्री महाकाल।
4: जय श्री महाकाल
6: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
6: बढ़िया हैं और बहुत अच्छे हैं। और आपके प्रोग्राम में कॉल लगा रहा था कि मैं सोच रहा था कि मेरा कॉल जल्दी जल्दी लग जाए, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में नजीबाबाद भी जाना था, तो आपका आपके पास कॉल लग गया जल्दी जल्दी में।
4: अच्छा,
6: बहुत अच्छा लग रहा है।
4: राकेश जी, आज का हमारा विषय है कि कैसे होते हैं आपके शहर के मेले और

0: इसी पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके शहर में कौन सा मेला लगता है और आपकी कोई खूबसूरत याद हो उससे जुड़ी।
1: जी जी जी, हमारे शहर में जो मेला लगता है, जैसे कि कल संडे शनिवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो कल हमारे जो है आजादी का जश्न जो है मेला लगता है 16 अगस्त का, 15 अगस्त का। ये बहुत खूबसूरत याद है, लेकिन इस चीज में मैं एक बार बताना चाहता था।
0: जी जी।
1: अगर तो जैसे कि जब भारत में आजादी का जश्न मनाया गया था 15 अगस्त को 1947 में, तो हिमाचल वालों को पता नहीं था कि 15 अगस्त क्या बोलते, 15 अगस्त को मनाया गया था। तो हमारे को हिमाचल में बाद में चला पता कि 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, तो फिर हमारे शिमला का एक छोटा तहसील है ठियोग, उन्होंने क्या किया, 15 अगस्त के आजादी का जश्न जो है 16 अगस्त को मनाया। तो फिर जब बाद में चला पता कि 16 अगस्त नहीं, 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो इस चक्कर में जो है 2 दिन जो है हमारे यहाँ जो है तब से लेकर जो है मनाया जाता है, क्या बोलते हैं, 16 अगस्त को भी और 15 अगस्त।
0: अच्छा,
1: ये चीज हमारे
0: नई जानकारी आपने हमसे साझा, श्रोताओं से साझा की। और इसी के साथ कोई और मेला हो जो आपके शहर में लगता हो साल भर में जिसके?
1: जी जी जी, साल भर में लगता है हमारे शहर में तो लगता है, हमारे गांव में लगता है मेला, वो लगता है मई 17 मई और क्या बोलते, बचपन में जब मेले में गया था तो बहुत सारी यादें, तो सब जो है जुड़ा जुड़ा थे, तो और मेरे को मुझे डर लगा तो मैंने वो मेला देखा है। और एक मेला और होता है हमारे, वो होता है दिवाली का मेला दूसरे दिन। उसमें क्या होता है सभी जो है मंदिर में जाते हैं, सभी बच्चे हुआ खिलौने खेलते भी हैं और खाते भी हैं, और हमारे बहुत अच्छा जो है उधर हमारे मेला होता है, क्या बोलते, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गाँव में कई प्रकार के मेले होते हैं, मतलब हर महीने या मई में और दिवाली के टाइम में हमारे मेला होता है।
0: कोई मस्त खाने की चीज हो जो आपको पसंद हो मेले से?
1: जैसे मेले के खाने से चीज होती है, जैसे पकौड़ी हो गई या जलेबियां हो गई, और अगर मेला जो हमारे मई में लगता है, जैसे मेले में हमें आइसक्रीम मिलती तो आइसक्रीम हम बहुत खाते थे, और खिलौने की बात करें तो मैं खिलौने में संदूक या क्या बोलते मोबाइल होते थे वो लेता था बचपन में।
0: बहुत सुंदर राकेश जी, और हमारे साथ ये सब जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी उज्जैन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, धन्यवाद।
0: जैसा कि राकेश जी ने भी साझा की, मेलों की पहचान केवल रंग बिरंगी दुकानों तक सीमित तो नहीं होती आशुतोष, बल्कि वहाँ की पारंपरिक खान पान की गलियाँ भी एक अनूठा अनुभव देती हैं। कढ़ाई में छनती गर्मा गर्म जलेबियाँ, मालपुए, भजिए और भुट्टे की सौंधी सौंधी महक पूरे वातावरण को खुशनुमा सा बना देती है ना।
2: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, मेलों के यह पारंपरिक व्यंजन हमारे खान पान की समृद्ध लोक संस्कृति का हिस्सा है। एक साथ बैठकर सहज भाव से भोजन करना सामाजिक समरसता और अपनत्व को बढ़ाता है। यह अनुभव हमें आधुनिक और एकाकी जीवन शैली से बाहर निकालकर साझा खुशियों के महत्व से जोड़ता है।
0: और इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
1: नमस्कार धीरज जी,
0: कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छा हूँ और आकाशवाणी युवाणी टीम को नमस्कार और पूरा आकाशवाणी उज्जैन परिवार को नमस्कार और सभी श्रोताओं का ये सावन महीने में जो भी मेले लगते उसका भरपूर आनंद लीजिए। और ये शिव महिमा भी है और मेलों का तो ज्यादातर बच्चे और युवा पीढ़ी ज्यादा आनंद लेती है और ये भारत की एक लोक परंपरा है
1: जी जी।
2: और देश की एक शान है और हमारी ऐतिहासिक धरोहर की एक पहचान है।
0: बिल्कुल धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। और धीरज जी, इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके शहर में कौन कौन से मेले लगते हैं?
2: जी सर, मैं आपको सूचित करूँ तो हमारे यहाँ सावन अमास के बाद शुरू होता है तो आज हमारे पाचम है, हमारे अगले पाचम से शुरुआत होगी मेले की। तो पाचम का मेला रहेगा, फिर राधन छठ रहेगी। राधन छठ के दिन हमारे बहने सब खाना बनाएगी पूरा दिन और सातम के दिन बिल्कुल खाना नहीं बनेगा, यानी चूल्हा बिल्कुल नहीं यानी जलाएगा, यानी पूरा पूरा दिन अगले दिन का खाना जो होगा वो ठंडा खाएंगे। और शीतला माता जी का जो दिन रहता है शीतला सातम, वही दिन बहन नदी तालाब में स्नान करके फिर अपना उपवास करेगी। और ये परंपरा पहले से है, फिर गोकुलाष्टमी आएगी, उसको हम गोकुलाष्टम भी बोलते हैं, जन्माष्टमी बोलते हैं। तो वो मेला हमारे पाटन शहर की जो साबर सरस्वती नदी है, इसको हम कुंवारिका नदी भी बोलते हैं, वहाँ बड़े मेला भराता है, आठम का भी और अमास का भी, यानी हरिहर महादेव का मेला भराता है। वैसे देखा जाए तो गुजरात में कई जगहों पर इस सावन मास में मेले भराते हैं।
0: जी जी धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। और इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि आपने अपने बात में बताया कि शीतला सप्तमी के एक दिवस पूर्व आप जो भोजन बना के रखते हैं अगले दिन चूल्हा नहीं बनता है, तो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटिए कि आपके घर में किस किस प्रकार का व्यंजन बनता है जो अगले दिन के पहले बना लेते हैं?
2: सर बहुत व्यंजन है, कई बदलाव भी आए, वड़ा होती थी, सुवाड़ी होती थी, पुरिया होती थी, फिर बहुत यानी मोहन थाल होता था, बहुत जात की, अभी मुंह में पानी भी आ जाएगा सर, यानी बहुत जात की रसोई होती, भजिया भी बनती थी, यानी आप वहाँ मेरे ख्याल से उसको नाम दूसरा बोलते होंगे, यानी इतने आइटमें बनती थी कि पूरा दिन आप अगले दिन जब खाओगे तो आपको कौन सा खाना वो भी चूज करना पड़ेगा कि इतनी वैरायटी से खाने की चीजें बनती थी सर।
0: जी धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, काफी स्वादिष्ट व्यंजनों के नाम आपने लिए। और उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है जो बचपन में आपको बहुत पसंद हो और आज तक पसंद हो?
2: सर देखा जाए तो मुझे तो यानी हमारे पाकन के देवड़े है बहुत पसंद है, वो देवड़े भी घर कम बनाते हैं, खरीद के लाते हैं, जो पाटन की एक पहचान है, जो पाटन के पटोला है, रानी की वाव है। जैसे पाटन की मिष्ठान में देखा जाए तो पाटन के देवड़े है वो मीठे होते हैं लेकिन बढ़िया होते हैं सर।
0: जी धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। धीरज जी, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेला अपने आप में मनोरंजन का और खेल कूद का एक अच्छा जरिया है, पर अगर हम इसे थोड़ी गंभीरता से लेकर बात करें तो इसमें जो स्थानीय कलाकार होते हैं, जो हाथ से सामान बनाने वाले होते हैं, उनके लिए मेले वाकई बहुत अच्छे होते हैं जहाँ वो अपना छोटा छोटा सामान बेच सकते हैं, इस पर आपका क्या विचार है?
2: सर एक देखा जाए तो रोजगार का एक माध्यम मेला बनता है और इसमें कई यानी छोटे मोटे व्यापारी को थोड़ा बहुत फायदा भी मिलता है। और भारत की परंपरा है कि मेले में यानी छोटे छोटे व्यापारी अपने चीज वस्तु भी बेचने के लिए आते हैं और इसमें से बहुत से व्यापारी को फायदा भी मिलता था। और देखा जाए तो

0: कई जगह पर तो मेरे मैंने देखा है कि लोक कला भी यानी डायरा भी थी, हमारे वहाँ डायरा बोलती है, लोक कला भी गीतों लोक गीता भी कार्यक्रम रहता है, यानी हर जगह को प्रोत्साहन मिलता था, व्यापारी को भी मिलता था, लोक कला को भी यानी गीत लोक गीत है उनको भी बढ़ावा मिलता है, यानी मेला एक हमारा माध्यम है, हमारी परंपरागत पहनावा, हमारा लोक संगीत, हमारा धार्मिक जो भी पहले की जो प्रणाली है वही सब इस मेले में शामिल हो जाती है, तो ये मेला है अभी भी है लेकिन पहले से थोड़ा बदलाव आया सर।
1: जी धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी विचार में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद।
2: मेलों में होने वाले लोक नाट्य, कठपुतली के खेल, जादू के प्रदर्शन और वो पारंपरिक संगीत की प्रस्तुतियां हमारी प्राचीन कलाओं को जीवंत बनाए रखती है। ये लोक कलाकार बिना किसी तामझाम के केवल अपनी प्रतिभा के दम पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, डिजिटल मनोरंजन के इस युग में भी इन पारंपरिक लोक कलाओं का आकर्षण अद्वितीय है, यह हमारी अमूल्य संस्कृति धरोहर है। इन कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उनकी कला का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हमारी लोक परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सकें। आइए श्रोताओं, इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
3: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: योगी जी आज का मौसम कैसा है आपके यहाँ पे?
3: अभी तो धूप नहीं है, मतलब बादलों से घिरा हुआ है।
1: जी योगी जी, योगी जी आज का हमारा जो विषय है वो है मेलों के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने शहर में जो मेले लगते हैं वो किस प्रकार से हमारी यादों में बहुत ही जुड़े हुए हैं। आपके शहर में कौन कौन से मेले लगते हैं योगी जी?
3: ये तो कई अवसरों पर लगते हैं, जैसे मकर संक्रांति पर भी लगता है, दशहरा के समय भी लगता है और दीपावली के बाद बहुत सारे जो मड़ई मेले होते हैं वो लगते हैं।
2: जी जी,
1: योगेश जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जो मेले लगते हैं वो किस प्रकार से खास होते हैं, उनमें क्या विशेष होता है जो बाकी जगहों के मेले पर देखने में नहीं मिलता?
3: अब देखिए, अब हम अपने इलाके का मतलब बात करें तो यहाँ झूला लगना और जो और भी जो मार्केट होता है
1: जी,
3: मिठाइयों के हो गए, कपड़े कपड़ों के हो गए या तरह तरह के जो भी मतलब ये सब चीजें होता है और लोग काफी मतलब उत्साह के साथ भाग लेते हैं।
1: बिल्कुल योगेश जी, इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई बचपन का किस्सा हो, कोई याद हो जब आप मेले में जाते हो और आपको कोई ऐसा कोई मेमोरी हो जो आपको बहुत अच्छे से याद हो।
3: बचपन में छोटा छोटा खिलौना लेने का काफी शौक था और कई बार पूरा भी हो जाता था, कई बार नहीं भी होता था।
1: जी योगेश जी,
2: इसी के साथ आपका कोई पसंदीदा खाना हो, कोई डिश हो जो आपको मेले की बहुत पसंद हो?
3: जलेबी वगैरह काफी अच्छे लगते हैं।
2: क्या बात, जलेबी करारी जलेबी, अलग ही स्वाद होता है उसका, सही बात है। इसी के साथ योगेश जी आप आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेले की विशाल भीड़ में जब हम बचपन में जाते थे तो सबसे सुरक्षित जगह पापा की मजबूत उंगली या उनके कंधे हुआ करते थे। पिता के कंधे पर बैठकर मेले की चकाचौंध देखना और माँ का हर कदम पर अपने हाथ थामे रखना, सुरक्षा और एक निस्वार्थ प्रेम का वो एहसास जीवन भर दिल में बसा रहता है। क्यों आशुतोष?
1: सच कहा प्रतिभा, वह अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि माता पिता का साया हमारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है, भीड़ में भी उनका अडिग विश्वास हमें कभी अकेला या डरा हुआ महसूस नहीं होने देता। अपनों के प्रति कृतज्ञता और पारिवारिक जुड़ाव का यह भाव हमेशा सहेजने योग्य होता है।
2: इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वाति बोल रही हूँ नर्मदापुरम होशंगाबाद से।
1: नमस्कार स्वाति जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं।
0: स्वाति जी, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो मेले के बारे में। आपके शहर में कौन कौन से मेले लगते हैं और उन मेलों की क्या खासियत है?
2: देखिए आशुतोष जी, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, पहले तो बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छे प्रोग्राम आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से आते हैं और दुबानी तो बहुत मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। और जैसा कि आपने बताया, हमारे शहर नर्मदापुरम में रामजी बाबा का मेला लगता है
1: जी।
2: तो इसमें वही बड़े बड़े झूले होते हैं जैसे अभी बातें चल रही हैं, और खाने पीने की चीजें, रंग बिरंगे खिलौने, ये सारे तो होते ही हैं
0: जी। स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने युवाणी कार्यक्रम की इतनी अच्छी तारीफ की, और बस आप जैसे ही श्रोता हैं जिनका प्रेम हमें बनाए रखे हुए हैं। स्वाति जी, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा आपने बताया रामजी बाबा का मेला, इस रामजी बाबा का जो मेला है इसकी क्या खासियत है, आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
2: जी देखिए, रामजी बाबा एक संत थे जिनकी समाधि होशंगाबाद में नर्मदापुरम में है
1: जी।
2: तो उनकी समाधि पर एक बड़ा सा मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। तो इसमें एक खास बात है जो अब तो खैर नहीं होता है, पहले जब हम छोटे थे तो बचपन में वहां पर एक गधा आता था
0: जी।
2: तो उस बड़ी मजेदार बात है, तो वो

0: जिन्हें अपनी आन बान शान का सबसे ज्यादा ख्याल होता है।
1: अच्छा,
0: तो गधा घूमता हुआ जाता था और वो उस व्यक्ति के पास खड़ा हो जाता था जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती थी और जो वाकई में इस तरह का होता था। जो पूछा था कौन ऐसा है जो अपनी क्लास में टॉप किया हुआ है, फिर वो गधा जाके उस बच्चे के सामने खड़ा होता था। वाकई में जो पूछा जाता था तो वो ऐसा होता था कि हाँ उस बच्चे ने टॉप किया होता था। तो
2: जी साथी जी, बिल्कुल आपने बहुत बहुत रोचक बात हमें बताई और बहुत ही मजेदार जानकारी है ये कि जिस प्रकार से आपने वो जो गधे के बारे में आपने बताया जो वो बिल्कुल सवालों के जवाब दे देता था। और स्वाति जी, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो नर्मदा किनारे काफी सारे मेले लगते हैं और काफी समय समय पर जो नर्मदा की परिक्रमाएं वगैरह होती हैं, क्या आप कभी उनमें जाते हैं? अभी आपने कुछ ऐसा अटेंड किया हो कोई मेला, कोई याद आपकी?
0: जी देखिए, ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि नर्मदा किनारे आपको घूमने का मौका मिले। और नर्मदा जी की परिक्रमा की जैसे आपने बात कही, वो तो बड़ी पुण्य फलित होते हैं, तो वो मौका मिलता है और मैं बड़ी समय से प्रयास में हूँ कि ऐसा मौका जीवन में आए और अवश्य जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगी वो परिक्रमा। और एक बात और बताना चाहूंगी कि जब जो भी नर्मदा का परिक्रमा करता है उसे कुछ ना कुछ जीवन में कुछ ऐसा सत्य या कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा जरूर होता है जो वो चाहता है, या तो कोई मैनिफेस्टेशन होता है या उसे कोई ऐसी अपने बारे में सत्य पता चलता है। तो ये तो एक फैक्ट है।
1: जी जी, नर्मदा मैया बहुत साथ देती हैं पूरी परिक्रमा में और उसके बाद हाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलता है, ये हमने भी बहुत सुना है और अभी तक किया नहीं है बट मौका मिलेगा तो जरूर।
0: बिल्कुल अवश्य अवश्य।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेला समाज के हर वर्ग को एक ही धरातल पर लाने का सबसे सुंदर और व्यवहारिक माध्यम है आशुतोष। वहाँ कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब नहीं होता, हर कोई एक ही कतार में खड़े होकर झूलों का आनंद लेते हैं और एक ही रास्ते पर साथ साथ मुस्कुराते हुए चलते हैं। ये एक सामाजिक समरसता का जीता जागता बहुत सुंदर स्वरूप है।
2: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, मेले हमें सिखाते हैं कि विविधता और समानता ही हमारे समाज की असली ताकत है। जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरे से मिलते हैं और एक सामूहिक उत्सव का हिस्सा बनते हैं तो समाज में आपकी आपसी विश्वास, सौहार्द और बंधुत्व की भावना और अधिक गहरी हो जाती है।
1: बहुत सुंदर। और इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: कर रहे हैं?
1: जी मैं रचना श्रीवास्तव बात कर रही हूँ भोपाल से।
0: नमस्कार रचना जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ।
2: रचना जी, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है मेलों के बारे में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भोपाल शहर में कौन कौन से मेले लगते हैं और उनकी क्या खासियतें हैं।
1: आज आपने जो टॉपिक लिया है वो वाकई में बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और मैं इससे बहुत अच्छा एक अपना विचार रखना चाहती हूँ कि पहले जो मेले लगते थे, मतलब अगर मैं मेरे छोटे बचपन की बात करूँ तो वो बस खाने पीने के, खिलौने के, कुछ ऐसे छोटे छोटे मेले लगते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम आज देखते हैं तो मेलों का स्वरूप जो है वो बहुत बदल गया है। आज मेले व्यापारिक मेले भी लगते हैं जहाँ पे इनोवेशन के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल बड़ा मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मतलब एक तरफ एक ट्रेडिशनल मेले होते हैं और दूसरी तरफ ये जो मेलों का स्वरूप जो चेंज हुआ है कि व्यापारिक मेले हैं या संस्थाओं की तरफ से जो लोक कारीगरों को, हस्तशिल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो मेला लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेले ने एक अपना स्वरूप बदला है।
0: जी जी, समय के साथ।
1: यही कहना चाहूँ जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, मतलब वाकई में बदलना भी चाहिए। मतलब पहले के हम अगर मेले में जाते थे तो ऐसा होता था कि वहाँ पे छोटे पंडाल रहते थे, धूल थी, मिट्टी थी, झूले भी अगर हम झूल रहे हैं तो उस समय भी थोड़ी बहुत धूल रहती थी, अगर हम कुछ बच्चों को खाने भी नहीं देते थे कि बेटा यहाँ पे शायद अच्छे से नहीं होगा, धूल मिट्टी का खाना है। लेकिन आज हम अगर बात करें तो हम ऐसे मेले देखने को मिलते हैं भोपाल में एक्चुअली, जहाँ पे मतलब काफी अच्छा व्यवस्था होती है, धूल मिट्टी नहीं होती, पूरा कारपेटेड होता है और यंग जनरेशन है उनके लिए जो व्यापार मेला लगता है और बड़े बड़े मेले लगते हैं।
2: जी रचना जी,
1: मुझे लगता है सभी को
2: बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बहुत अच्छा विचार आपने रखा। ये वाकई आज के समय में बहुत ही जरूरी है, इस प्रकार की सोच होना और इस प्रकार का बदलाव होना बहुत जरूरी है। रचना जी, इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि भोपाल में जैसे आपने बताया अलग अलग प्रकार के मेले लगते हैं, कहीं व्यापार मेला होता है तो कहीं शासकीय किसी प्रकार का मेला होता है, आपके आसपास किस प्रकार से और कौन से मेले लगते हैं जो आपको बहुत पसंद है, आप अक्सर जाती हों?
1: हाँ, मेरे हमारे यहाँ भोपाल में दशहरा मैदान है और वहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे और दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छे मेले लगते हैं, बहुत ही बड़े स्केल पे लगते हैं। और मतलब अगर वो दशहरा मैदान का मेला लगा है तो मुझे लगता है कि हर एक भोपाली को वहाँ जाके घूम के आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि आप तुमने मेला नहीं देखा तो ऐसे बोलने में लगता था नहीं यार नहीं देखा, अरे बोले क्या बात करी, मेले में तो जाना बनता ही बनता है। तो और लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के मतलब अलग गुजरात से, राजस्थान से, बंगाल की साड़ियाँ, कोलकाता के कपड़े, और अब जो हम लोग महिलाओं के लिए बड़ा ही एक वो रहता है फेस्टिव टाइम की मेले में जाना है और शॉपिंग करना है।
0: जी जी, और मेले में
1: भी देखती हूँ कि वहाँ पे एक्चुअली मैं ये भी देखती हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग शॉप लगाते हैं बार्गेन भी होती है और कई लोग उसको बहुत वो भी करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जो हस्तशिल्प वाले मिले, जो हाथ की कला से वो लोग अपने को दे रहे हैं
0: जी,
1: तो हमें उनकी प्राइस को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए और देना चाहिए उनकी जो प्राइस है उसको।
2: जी जी रचना जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ जो दशहरा मैदान में मेला लगता है वो वाकई इतना अद्भुत होता है कि हम हर पहचान वाले से, मिलने वाले से कह सकते हैं कि आपने भोपाल का मेला नहीं देखा तो क्या देखा।
1: क्या
2: देखा जी रचना जी, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ वो शायद भोजपाल का मेला होता है।
1: हाँ नहीं, भोजपाल का भी होता है, मतलब तो वहाँ पे एक भोजपुर करके जगह है जहाँ पे शिवरात्रि के टाइम पे मेला सजता है।
0: जी, जी।
1: भोपाल से मुझे कहना चाहिए कि शायद 28 से 30 किलोमीटर दूरी पे है, तो भोपाल के आसपास ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के, मैंने बोला ना कि कई बार ट्रेडिशनल मेले हैं, कभी कहीं व्यापारिक मेले हैं, तो बहुत पूरा साल भर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई मेला आपको जरूर देखने को मिल जाता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये विचार साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। थैंक यू।
0: कई मेलों में ज्ञान विज्ञान और साहित्य से जुड़े स्टॉल्स भी विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं और पुराने और दुर्लभ पुस्तकों की दुकानें हुई हस्तलिखित कृतियाँ और स्थानीय इतिहास से जुड़े प्रकाशन हमें अपनी बौद्धिक विरासत से रूबरू कराते हैं। मेले में किसी अच्छी पुस्तक को खोजना भी एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, क्यों आशु?

बिल्कुल सच कहा प्रतिभा। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन का यह संगम मेलों को और भी अधिक सार्थक बना देता है। जब युवा मेले से कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक या कोई उपयोगी वस्तु अपने साथ ले जाते हैं तो वह उनकी सोच को विस्तार देती है। यह हमें सीखने और जानने के प्रति सदैव जिज्ञासु बनाए रखता है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार दीदी, जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल जी, आपका नाम?
2: दीदी मेरा नाम दूल्हे सिंह यादव है, ग्राम बापसिया, जिला आगर मालवा से बोल रहा हूँ।
0: दूल्हे सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है सर, मजे में। आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और दिलीप सिंह जी, जैसा कि हम आपको बता दें, हमारा आज का विषय है मेलों के बारे में। हमारे गांव, शहर, हमारे इलाके में जो साल भर में मेले लगते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कौन सा मेला लगता है?
2: सर जी, हमारे गाँव के पास में एक तो देवनारायण मंदिर पे मेला लगता है, अभी छठ आएगी ये भादवा में
0: जी,
2: उसमें मेला लगता है एक दिन का सिर्फ। और बैजनाथ में तो सावन महीना मेला चल रहा है, यहाँ पे बैजनाथ महादेव का मंदिर है आगर के पास में ही
1: जी जी,
2: तो उसमें तो मेला चलता है। और पहले दो मेले लगते थे यहाँ पे, एक तो कार्तिक की पूनम का लगता था और एक जो चैत की पूनम पे आखिरी होता था वो। तो अब आजकल क्या है, वो कम पड़ गया। व्यापारी लोग बेल लेने के लिए आते थे बाहर के, और बहुत बड़ा मेला होता था, उसमें सारे व्यापारी बाहर के आते थे, दुकानदार भी होती थी। आजकल वो नहीं है सर, अब छोटे हो गए वो मेले, तो लगते हैं आज भी
0: जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई दुले सिंह जी कि वो मेले पहले लगते थे पर अब नहीं लग पा रहे हैं किसी व्यापारिक कारण से। दुले सिंह जी, हम आपसे जी जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा बचपन का किस्सा हो, कोई याद हो, जब आप बचपन में छोटे छोटे थे तब आप मेलों में जाते हो अपने माता पिता के साथ में।
2: बिल्कुल सर, गया हुआ मैं दादाजी के साथ में था मेले में, वो बेल ले जाते थे तो मेरे लिए पैसे भी देते थे वो, तो खाने पीने के। और मैं फिर वो बिंडल मंगाते थे उधर से
0: जी,
2: तो उनमें से इनाम का मेरे को फोटो का शौक था सर, भगवान के फोटो निकलते थे उसमें इनाम में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: हाँ, तो वो लेके हम बड़े उत्सुक होकर घर लेके आते थे सर। उसमें कैलेंडर वगैरह होता था, ये 51 बीड़ी वाले इंदौर की बीड़ी थी वो उस समय।
0: हाँ।
2: तो वो याद है सर मुझे अब भी।
0: बिल्कुल दिलीप सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज का समय काफी बदल गया है और मेलों में जो आज के युवा हैं वो थोड़ा सा कम प्रोत्साहित होते हैं जाने के लिए। कई बार वो सोचते हैं कि ठीक है एक छोटा सा मेला ही तो है, और वो अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। तो आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर कि आज के जो मेले होते हैं वो उन्हें अटेंड करना चाहिए, लोगों की जो हमारी संस्कृति है उसे समझना चाहिए?
2: जी सर बिल्कुल जाना चाहिए, युवाओं को भी मेलों में जो है घूमने फिरने के लिए जाना, जरूर जाना चाहिए
1: जी जी। जी जी
2: कई जानकारी मिलती है सर उसमें मेले में जाने से
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद सर।
1: मेले में लगे बड़े बड़े आसमानी झूले हम सभी के बचपन के सबसे रोमांचक मेमोरीज में से एक होते हैं। जब झूला धीरे धीरे ऊपर जाता था और पूरे शहर का एक बहुत सुंदर सा दृश्य की तरह नीचे दिखाई देता था, तो मन में थोड़ी सी घबराहट और ढेर सारा उत्साह एक साथ उमड़ पड़ता था, क्यों आशुतोष? और वह ऊंचाई से दुनिया को देखने का वो पहला अनुभव भी कितना सुंदर होता था ना।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, झूले का वह अनुभव हमें जीवन का एक बहुत ही बढ़िया दर्शन सिखाता है। जैसे झूला ऊपर जाकर नीचे आता है फिर ऊपर उठता है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी अस्थाई होते हैं। अपनों का हाथ थामकर डर का सामना करना और आगे बढ़ना ही आत्मविश्वास की सच्ची पहचान होती है। इसके साथ श्रोताओं, आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
3: मैं मेरा नाम जसवंत है, एंड में साजापुर एमपी से बात कर रहा हूँ।
0: जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसवंत जी, आज हम बात कर रहे हैं मेलों के बारे में। आपके शहर में कौन कौन से मेले लगते हैं और उनकी क्या खासियत है?
3: सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मतलब मैं है ना शहर में नहीं रहता, मतलब मेरा मतलब जो मेरा विलेज है वो शहर में आता है, तो मतलब वो तो शहर ही बोलना पड़ेगा ना। तो मैं मतलब खासकर हमारे विलेज में ज्यादा मेला लगता है, क्योंकि वो जो रंग पंचमी का जो फेस्टिवल होता है ना, उसके तीन दिन बाद मतलब होली के 3 दिन बाद फिर रंग पंचमी का कुछ फेस्टिवल होता है, उसके बाद ही मतलब लगता है वहाँ पे मेला। तो उसमें ना मतलब हमारे जो मतलब मान लो मतलब हाँ हमारे जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं उनकी परंपरा से चलते आ रहे हैं, क्योंकि मतलब गांव में आपको तो पता है ना मतलब बुजुर्ग मतलब चलते रहते हैं कुछ भी उनका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें जसवंत जी की, गांव में बहुत ही बिल्कुल गांव के माहौल में ढले हुए मेले लगते हैं। जी जसवंत जी, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओके ओके सर, थैंक यू।
1: आशुतोष, घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगी मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। आज का यह एक घंटा कैसे हंसी खुशी, रोमांच और यादों की गलियों में बीत गया, पता ही नहीं चला ना। सच में आज कैसे होते हैं आपके शहर के मेले विषय पर हमारे श्रोताओं ने जो दिल छू लेने वाले किस्से और बचपन की मीठी यादें साझा की हैं, उसके मन को पूरी तरह खुशियों से भर दिया है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेले कैसे पूरे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को एक साथ जोड़ने और दूरियां मिटाने का सबसे बड़ा बहाना बन जाते हैं। आज जितने भी प्यारे दोस्त हमसे फोन पर लाइव जुड़े, वह तमाम श्रोता जो लगातार प्यास कर रहे थे लेकिन फोन लाइन व्यस्त होने के कारण बात नहीं हो पाई, आप सभी का इस शानदार भागीदारी और प्यार के लिए आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल सही आशुतोष, जाते जाते हम अपने सभी श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपके शहर या कस्बे में कोई मेला लगे तो अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर वहां जरूर जाएं। अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय हुनर की कद्र करना ही हमारी असली पहचान है।
0: क्या बात है प्रतिभा, बहुत ही विचारणीय नोट पर आज हम इस कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन और हमारा यह प्यारा सा मंच युवाणी, जो कि फिर लौटेगा कुछ और नई तरंगों, नए विषयों और उमंगों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और खुशियां बांटते रहिए। हम थे आपके साथ आपके रेडियो मित्र आशुतोष
1: और प्रतिभा, लेते हैं आपसे विदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी, युवा शक्ति, युवा सोच और युवा अभिव्यक्ति के संगम से परिपूर्ण। इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, भक्ति के सुर जब वातावरण में गूंजते हैं तो मन को एक अलग ही शांति और आनंद की अनुभूति होती है। नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र अदिति निगम। श्रोताओं, अब वक्त है भजन संध्या का। आइए आज की इस भक्तिमय यात्रा में हम अलग अलग आराध्यों के चरणों में भक्ति के स्वर अर्पित करते हैं और सुनते हैं एक शिवमय मधुर भजन।

हर हर महादेव। शिव भक्ति के इन पावन स्वरों के बाद अब हम बढ़ते हैं मर्यादा, त्याग और प्रेम के प्रतीक भगवान श्री राम के मधुर भजन की ओर। आइए सुनते हैं एक भक्ति युक्त मधुर भजन।

माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में पूरी दुनिया है। माँ के चरणों में श्रद्धा हो तो मन को विश्वास मिलता है और जीवन में नई शक्ति। माँ के चरणों को स्मरण करते हुए आइए सुनते हैं एक मधुर भजन।

जहाँ भक्ति की मधुर तान हो, जहाँ प्रेम की भाषा हो, जहाँ राधा नाम में कृष्ण और कृष्ण नाम में राधा का एहसास हो, वहाँ भक्ति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत मधुर भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भजन संध्या कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और मधुर भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। मैं आदित्य निगम आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, अब हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम शुरू होता है। नागपंचमी विशेष फिल्मी संगीत कार्यक्रम में आपको पहला गाना सुनवाते हैं फिल्म निगाहें से। गाने में आवाज अनुराधा पुडवाल की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार आनंद बख्शी हैं।

श्रोताओं, अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म दूत का कर्ज से, जिसमें आवाज अनुराधा पौडवाल की है। गाने के गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत अनु मलिक का है।

प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संगीत का इतिहास। आलेख अवनीश सोमकुमार का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संगीत का एक दिलचस्प इतिहास है। वंदे मातरम को संगीतबद्ध करना संगीतकारों के लिए गर्व की बात तो थी ही, लेकिन यह राष्ट्रधर्म का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य भी था। संस्कृत निष्ठ शब्दों की लयकारी करना और उसे सामूहिक गान के लिए उपयुक्त बनाना विलक्षण सांगीतिक प्रतिभा के सामर्थ्य की ही बात थी। इस गीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मनीषियों ने अपनी प्रतिभा के पुष्प अर्पित किए हैं। वंदे मातरम की पहली धुन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई और राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में स्वयं प्रस्तुत की। 1904 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की आवाज में ही वंदे मातरम का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बाजार में आया। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तेज हो गया था। फ्रांस की रिकॉर्ड कंपनी पाथे ने इसे प्रकाशित किया और यह एक पेंटोग्राफ जैसा रिकॉर्ड था। 1901 ईस्वी में दक्षिण राजन सेन ने स्वयं का संगीतबद्ध वंदे मातरम गाया। इसको संगीतबद्ध करने में सबसे प्रमुख नाम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का है, जिन्होंने लाहौर से इसकी सार्वजनिक प्रस्तुति शुरू की और देशभक्तों के बीच विभिन्न स्थानों पर गाते रहे। उनके संगीतबद्ध किए हुए वंदे मातरम की विशेषता ये थी कि उन्होंने इसकी मूल प्रेरणा और शब्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संगीत दिया। वहीं एक अन्य संगीतकार दिलीप कुमार राय ने वंदे मातरम की नई संगीत रचना तैयार की और उसे महात्मा गांधी की उपस्थिति में 29 अगस्त 1927 को प्रस्तुत किया। उनके दो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी आवाज में जो वंदे मातरम गाया वह असम की लोकगीत शैली में है। दूसरा रिकॉर्ड कर्नाटक संगीतकार स्वर्गीय MS सुबुलक्ष्मी के साथ गाया गया था। यह संगीत रचना राग बिलावल और राग बागेश्री का समन्वय है। वंदे मातरम के संगीत से जुड़ा एक अन्य नाम मास्टर कृष्ण राव का है। उन्होंने अकेले ही इसकी प्रस्तुतियां देना शुरू की थीं और इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे। पूना में जन्मे मास्टर कृष्ण राव एक गायक अभिनेता थे। उन्होंने राग झिंझौटी में वंदे मातरम तैयार किया जो सार्वजनिक गायन के लिए उपयोगी था। पंडित पलुस्कर ने वंदे मातरम को राग काफी में प्रस्तुत किया। इसी राग में निबद्ध पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का गाया वंदे मातरम खूब सराहा गया। उन्होंने इसका संपूर्ण गीत गाया। बाद में जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह आकाशवाणी पर वंदे मातरम गाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया तो ओंकारनाथ ठाकुर ने सावधान की मुद्रा में पूरा वंदे मातरम गाया। 1935 से 1952 ईस्वी के बीच कई विख्यात संगीतकारों ने वंदे मातरम को संगीत दिया। उनमें से प्रमुख मराठी रंगमंच के अभिनेता केशवराव भोले, विष्णुपंत फगड़ीस, VD अभ्यंकर, मास्टर कृष्ण राव और दिलीप कुमार राय प्रमुख हैं। विष्णुपंत फगड़ीस ने वंदे मातरम को राग सारंग में प्रस्तुत किया। उस सभा में गोविंद वल्लभ पंत, पंडित पट्टा भी सीतारामैया, दादा धर्माधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद मोगूबाई कोडीकर ने राग मिश्र खंबावती में इसे गाया। बाद के समय में तिमिरबन भट्टाचार्य ने राग दुर्गा में वंदे मातरम की संगीत रचना की जो ब्रिटिश बैंड पर भी बजाया गया। राग दुर्गा की धुन मार्च पास्ट में बजने वाले गीत की तरह है। राग दुर्गा की धुन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से प्रसारित करवाया जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जन जन को जोड़ने में वंदे मातरम की विशेष भूमिका थी। लोगों में देश प्रेम और आजादी पाने की अभिलाषा बढ़ाने वाली इस रचना का ही प्रभाव था जब भारत के कोने कोने से अंग्रेजों को वापस अपने देश जाने के

0: लिए आवाजें तेज होती गईं। इस गीत ने नागरिकों के स्वाभिमान को जगाकर संगठित रूप से राष्ट्र के सम्मान को कायम रखने के लिए जुनून पैदा किया। राष्ट्रगान की धुन के संबंध में यह महसूस किया गया है कि उसमें शब्दों से ज्यादा धुन का महत्व होता है। इस धुन को न केवल भारतीय संगीत की खूबी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए बल्कि कुछ हद तक पश्चिमी संगीत के लिए भी सुविधाजनक होना चाहिए, जिससे उसे ऑर्केस्ट्रा तथा बैंड पर विदेशों में भी आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक योगदान देने वाले गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान रहेगा और उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त होता रहेगा। संसद तथा विधानसभा में वंदे मातरम का गायन किया जाता है। शासकीय कार्यालयों में वंदे मातरम के गायन का उद्देश्य शासकीय कर्मियों में राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्र सेवा की भावना जगाना है। इससे अनुशासन भी आएगा और शासकीय कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचने की प्रेरणा भी मिलेगी। आजकल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी अन्य विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आजकल। विषय था वंदे मातरम के संगीत का इतिहास। आलेख अवनीश सोमकुमार का था और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।
2: नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की।

0: भोपाल में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर भर में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी राज्य स्तरीय समारोह के अलावा सीएम हाउस और बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
1: भोपाल में आजादी की वर्षगांठ का जश्न उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शहर की विधानसभा, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर के साथ सभी थानों और शासकीय निजी विद्यालय, महाविद्यालय, दफ्तरों, सार्वजनिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक दलों के कार्यालय आदि में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। भोपाल के लाल परेड मैदान में राष्ट्रीय पर्व का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति के उत्साह से गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और परेड में शामिल टुकड़ियों की सलामी ली। समारोह में पुलिस बैंड सहित 22 टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। परेड का नेतृत्व एसडीओपी सिहोरा जिला जबलपुर आदित्य सिंघारिया ने किया, जबकि नगर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली हेमंत कुमार निमाड़े ने सहायक परेड कमांडर की भूमिका निभाई। मार्च पास्ट में महाराष्ट्र पुलिस बल ने भी हिस्सा लिया। इस खास मौके पर पदक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा से जुड़े कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदकों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाल परेड मैदान से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वीर सेनानियों और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सपूतों को नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज देश स्वतंत्रता के इस मुकाम तक पहुँचा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की परेड में वंदे मातरम के गायन का शामिल होना हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। जनगणमन और वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना एवं गौरवशाली विरासत के प्रतीक हैं। दोनों का एक साथ गायन हमारी समृद्ध राष्ट्रीय विरासत के पुनर्स्मरण सम्मान का प्रेरणादायी अवसर है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
2: युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष, इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी

0: रणनीति का निर्माण किया है, जिसके साथ महत्वपूर्ण पिलर्स है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल कला संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है।
1: सरकार अगले 2.5 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और बड़े निवेश पर विशेष फोकस करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में हर वर्ष 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य स्तरीय समारोह के समापन के बाद लोकभवन में राष्ट्रीय पर्व पर स्वागत समारोह हुआ, जिसके बाद पर्व की संध्या पर रविंद्र भवन में आजादी का महापर्व कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति के जज्बों से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
2: वहीं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1 सप्ताह तक संपूर्ण जिले में अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकालकर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: धार जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्र प्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इन तिरंगा यात्राओं में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजनों के साथ सहभागिता की गई। धार एवं बदनौर में निकाली गई भव्य और प्रेरणादायक तिरंगा यात्रा में धार महू सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर भी, धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों के साथ सम्मिलित हुई और हाथों में तिरंगा थामकर प्रमुख मार्गों पर मार्च किया। भव्य तिरंगा यात्रा में देशभक्तों द्वारा लहराते राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति के गीतों ने पूरे वातावरण को पूरी तरह से तिरंगामय बना दिया। वहीं संपूर्ण क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
4: स्वतंत्र दिवस की 15 अगस्त की मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को, देश प्रदेश वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहती हूँ। साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। हम एक संकल्प लें और एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, ताकि हमारा देश समृद्ध और हरा भरा रहे। हमको तिरंगा की शान है, हमारी हर घर तिरंगा लगाए, वो दुकान हो कहीं भी हो, और हमको तिरंगा लगाना चाहिए। वो सभी देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद।
3: वहीं स्वतंत्रता दिवस पर धार जिले में जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा ने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी साथ थे। संयुक्त परेड में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, महिला बल, विद्यालय एवं महाविद्यालय के NCC एवं स्काउट के छात्रों सहित विभिन्न विभागों के दलों ने उत्साहपूर्वक भाग ले आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कलेक्टर श्री मीणा द्वारा मीसा मंदी, लोकतंत्र सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का भी सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम दिए गए संदेश का सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
2: प्रकृति जब मुस्कुराती है तो वो अपने आंगन में जीवन के अनगिनत रंग और मधुर ध्वनियां बिखेर जाती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित पुआमा नगर वन, जहां प्रकृति और मानव के संरक्षण प्रयासों का एक शानदार संगम देखने को मिल रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता।
5: सुबह की पहली किरण के साथ जब पुआमा नगर वन का कोना कोना जाग रहा था, तभी पर्यावरण प्रेमियों की टीम ने यहाँ जीवन का एक अद्भुत उत्सव दर्ज किया। आपको जानकर है हर्ष होगा कि इस वन क्षेत्र में 38 विभिन्न प्रजातियों को अटखेलियां करते देखा गया, जिसमें राजसी, स्टेक्रेट हॉर्ड ईगल से लेकर फफ थ्रोटेड वेबलर जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा रेड एबडावट और स्क्रेली ब्रेस्टेड मुनि

0: के झुंड इस वन की हरियाली में नया संगीत घोल रहे हैं। इन पक्षियों की सक्रिय प्रजनन गतिविधियां इस जंगल के सुरक्षित और समृद्ध होने का जीवंत प्रमाण है। सबसे सुखद तस्वीर उस समय उभर कर आई जब नगर वन में हाल ही में विकसित किए गए नए तालाब का जल क्षेत्र जलीय पक्षियों के लिए एक शानदार प्राकृतिक आवास बन चुका है। तालाब में स्पॉटेड विल्ड डक, लिटिल ग्रीव और कार्मोरेंट जैसे पक्षियों का डेरा डालना इस बात का सकारात्मक संकेत है कि जल संरक्षण के प्रयास अब जमीन पर जीवन बनकर लहला रहे हैं। वन विभाग के यह अथक प्रयास अब रंग ला रहा है। रेंज ऑफिसर नीरज बिसेन के अनुसार लैंटाना उन्मूलन और सघन वृक्षारोपण से इस क्षेत्र की जैव विविधता में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं छिंदवाड़ा के उप वन मंडलाधिकारी अनादि बुधालिया हर्ष व्यक्त करते हुए बताते हैं कि पुआमा नगर वन में जलीय पक्षियों की बढ़ती गतिविधियां हमारे हैबिटेट डेवलपमेंट का शानदार परिणाम है। विभाग का लक्ष्य इस वन को केवल एक जंगल नहीं बल्कि जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भविष्य में होने वाले नियमित पक्षी सर्वेक्षण यहाँ के वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत करेंगे। पुआमा का यह हरा भरा परिक्षेत्र हमें सिखाता है कि यदि हम प्रकृति की ओर संरक्षण का एक कदम बढ़ाएं तो वह जीवन के सैकड़ों उपहार हमारी झोली में डाल देती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
1: विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर बैतूल जिले में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, समय पर पहचान और जन जागरूकता को लेकर विशेष अभियान आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत बैतूल, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, भीमपुर, दामजीपुरा, चिचोली एवं आमला में सिकल सेल जांच एवं जागरूकता शिविर लगाए गए। शिविरों में लोगों की सिकल सेल जांच के साथ बीमारी के लक्षण, उपचार, नियमित फॉलोअप और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। युवाओं को विशेष रूप से विवाह से पहले वर वधु दोनों की सिकल सेल जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। जिला नोडल अधिकारी सिकल सेल कार्यक्रम डॉक्टर अंकिता सीते ने 7 जागरूक नागरिकों को सिकल मित्र के रूप में जोड़ा। सिकल मित्र अपने अपने क्षेत्र में सिकल सेल से संबंधित सही जानकारी को स्वास्थ्य संस्थाओं से आगे समुदाय और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सीते ने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। जब समाज का जागरूक व्यक्ति अपने गांव और समुदाय में सही जानकारी पहुंचाता है तभी यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी जांच आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। समय पर सिकल सेल की पहचान होने से मरीज को आवश्यक उपचार और नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अभियान के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि शादी से पहले सिकल सेल की जांच कराएं, सही जानकारी अपनाएं, झाड़फूंक से बचें और समय पर शासकीय अस्पताल में निःशुल्क जांच एवं उपचार कराएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से डॉक्टर मयंक भार्गव।
1: मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत भिंड जिले में 30 एमपी बटालियन, एनसीसी और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से सीएटीसी कैंप में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, बल स्टॉप सेंटर प्रशासक साधना चौधरी, 30 एमपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलवंत सिंह, मैं भारत आइकॉन राहुल राजपूत, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मीना धोरे, मैं भारत और कैंप में चंबल संभाग ग्वालियर के एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा उपस्थित कैडेट को मिशन वात्सल्य के तहत बाल अधिकार किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। मिशन सहकारी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जेंडर विविधीकरण और महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। साधना चौधरी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर की गतिविधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि कोई भी पीड़ित महिला अथवा पॉक्सो विक्टिम पुलिस अथवा स्वयं वन स्टॉप सेंटर्स में उपस्थित होकर संरक्षण प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर में अल्पकालीन संरक्षण प्रदान किया जाता है जहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विधि परामर्श की संपूर्ण व्यवस्था रहती है और उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का पात्रता अनुसार प्रयास किया जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। प्रादेशिक

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में

0: भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज साथ ही आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य निगम। अब आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। 7:21 पर माटीरी बात मालवी समाचार निमाड़ी लोकगीत सुर्खियों में आप सुन सकेंगे। रात 8:00 फिल्मी संगीत 8:15 पर। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। न्यूज 8:09 रात 9:00 आप सुन सकेंगे। 9:15 पर उर्दू समाचार का रिले होगा। 9:30 पर पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले होगा। रात 10:00 आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। 10:30 पर आप सुन सकेंगे राग रजनी। रात 11:00 आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का रिले होगा। ग्यारह बजकर 10 पर एफएम गोल्ड के कार्यक्रम दिल्ली से रिले होंगे। ये थी आज रात तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब हम सुनेंगे कल दिन भर अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:50 पर संकेत धुन आप सुन सकेंगे। वंदे मातरम का उद्घोष 5:52 पर। सुबह 6:00 हिंदी में समाचार का रिले होगा। वंदनवार चिंतन आप सुन सकेंगे 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:30 पर। संगीत सरिता 6:45 पर आप सुन सकेंगे। सुबह 7:00 आप सुनेंगे महाकाल वंदन। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकेंगे 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 7:10 पर। सुप्रभात उज्जैन आप सुन सकेंगे 7:20 पर। सुबह 8:00 समाचार प्रभात का रिले होगा। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण किया जाएगा। पर उज्जैनी आरजे का अनुप्रसारण किया जाएगा। 9:30 पर बॉलीवुड बीट्स का रिले होगा। सुबह 10:00 आप सुन सकेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुन सकेंगे हिंदी न्यूज बुलेटिन। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम का रिले होगा। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। दोपहर 2:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार

0: समाचार आप सुन सकेंगे 2:10 पर। दोपहर समाचार आप सुन सकेंगे जो 2:15 पर, सदाबहार नगमे फिल्मी गीत 2:30 पर, सखी सहेली दोपहर 3 बजे रिले किया जाएगा, साथ ही हेलो फरमाइश दोपहर 4 बजे रिले होगा। अभी आपने सुनी आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप जल्द ही प्रादेशिक समाचार कार्यालय सुनेंगे भोपाल केंद्र से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बहू जी, मम्मी जी,
5: इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
5: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
5: जैसे UPI से।
4: अच्छा,
5: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
5: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में उनके जीवन दर्शन और समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस आयुक्त की ओर से भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता की पहचान भी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भोपाल कमिश्नर ने राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का संदेश देते हुए हेलमेट पहनने के लिए भी प्रेरित किया।
1: ये पुलिस विभाग की तरफ से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, ये अंग है। हेलमेट सभी को पहनना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसका सबको पालन करना चाहिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्ययोजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट एवं क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्ययोजना में बदलना है। कार्यक्रम में

0: प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि निर्यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय उत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। ये सम्मान वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, दक्षता, कार्यकुशलता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान के बारा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने VVG रामजी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से प्रस्तावित विकास कार्यों की घोषणा भी की। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 289,000 मकान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, ये हमारा संकल्प है।
2: हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। आज भले 289,000 घर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। राजस्थान के बहनों और भाइयों, हम लगातार तब तक मकान बनाएंगे जब तक हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री, VD शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष और आशीष उषा अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक तथा सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में श्रृंगार किया गया। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकाली जा रही है। नागपंचमी के मौके पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी के प्रसिद्ध नागद्वारी मेले में नागपंचमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बड़वानी जिले के नागलवाड़ी भीलट देव मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आगरमालवा के प्रसिद्ध प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिवालय बैजनाथ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं खंडवा के ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का ये दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में आज जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र के संयुक्त तत्वावधान में रेवा सेवा समागम नर्मदा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। छतरपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के लिए 20 अगस्त से खंड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। UPSC की CAPF 2025 परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए के लिए चयनित झाबुआ के राजवीर सिंह पवार को कलेक्टर और SP ने सम्मानित किया। शहडोल में नकली घी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष जाँच अभियान के तहत एक दर्जन से अधिक दुकानों से देसी घी के सैंपल लिए गए। जबलपुर में नागपंचमी पर सपेरों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई की। तुलसी शोध संस्थान नयागांव चित्रकूट के सभागार में संस्कृति विभाग के द्वारा कल से 2 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले में आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई। अशोकनगर कलेक्टर द्वारा जिले में ईट राइट एक्टिविटी के अंतर्गत 7 खाद्य कारोबारकर्ताओं को हाइजीन रेटिंग के संबंध में प्रमाण पत्र आज वितरित किए गए और मंदसौर कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में CM हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए।

में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अगले 24 घंटों के दौरान रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
6: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है मालवा की माटी, परंपराओं, लोकगीतों और जनजीवन की बात का। आइए जुड़ते हैं अपनी जड़ों से और शुरू करते हैं प्रोग्राम माटी री बात।

नमस्कार का साथ राम राम मारा किसान साथी हूँ। तो सबसे पहला तो हमारा यह बता दो कि कैसा हो तुम सब। अरे मतलब चकाचक तो हो नहीं। देखो वो भगवान ती याच प्रार्थना करो ना, आज हवेरे भी याच प्रार्थना करी मने कि जो हमारा श्रोतावान है वे सब चकाचक रहे। तो सबसे पहला तो हम सबको स्वागत है, वंदन है और उनका साथ घणो घणो अभिनंदन भी है। यो तुम्हारो भाई सुमित कुमार अनि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी प्रसारण वेवा वाला विशेष माटी री बात कार्यक्रम के एक बार फिर थम सबका बीच में लेके आई गयो है। आज सोमवार है न, अपनी तिथि देखा तो आज अपना सावन महीना का शुक्ल पक्ष की पंचमी हो गई है। और या कोई मामूली पंचमी नहीं है, आज नाग पंचमी है। देखो सावन महीनो आते ज मालवा की धरती पे हर तरफ हरियाली छाई जावे है। खेत खलियान हरे हर हो जाए है, पेड़ पौधा के नई जान मलवा लगी जाए है और गांव गांव में तीज त्यौहार की रौनक देखवा के मिले है। सावन की पंचमी के नाग पंचमी को त्यौहार भी आस्था परंपरा और प्रकृति से जुड़े अंतर एक खास पर्व है। नाग पंचमी पे नाग देवता की पूजा करवा की पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि नाग देवता धरती पानी और प्रकृति की रक्षा करे है। गांवड़ा वन में तो आज भी कई परिवार अनिदन घर की देहरी दीवार या पूजा की जगह पे नाग देवता को चित्र बनावे है, दूत लावे है, फूल लावे है, दब और हल्दी कुमकुम ती नाग देवता की पूजा करे हैं। कई जगह लोग नाग देवता के दूध चढ़ावे और सुख शांति और परिवार की समृद्धि की कामना भी करे हैं। तो आज

है कि नागपंचमी के केवल धार्मिक पर्व नहीं समझनो, उसकी बजाय वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण बचाव का संदेश भी देनो। इससे जुड़े इकले इको नागपंचमी को महत्व और भी बढ़ी जाए है। तो या तो ही गई आज का दिन पे बात। अब आई जाए अपन आज का विषय पे। तो आज अपन प्रोग्राम में अपन बात करवा रहा हाँ यातायात व्यवस्था के बारे में, यातायात नियम पे, क्योंकि तुम्हारे मालूम में होगा कि आजकल कितरो ट्रैफिक बढ़ी गयो है। जही देखो वही जाम एग्जाम न आवे ने इको इका संबंध में अपन बात करवा रहा हाँ अपना यातायात पुलिस का उप अधीक्षक दिलीप सिंह परिहार थी, जो अपना संपूर्ण जानकारी देगा यातायात का नियम की और उसका साथ हाल ही में अपनी फसल हो का कहीं हाल चली रहा है इ पे भी थोड़ा ध्यान दिला। कहीं है नहीं अभी सबका खेत उड़ में सोयाबीन में फल आने लग फूल आने लग गया है और भी फल भी बनवाज लग गया है, उनकी पापड़ी बनने लगी गई, उनमें दाना बनी रहा है और उसका साथ खेत उड़ में इल्ली को प्रकोप भी बढ़ी गयो है। तुमने देखियो होगा कि गंज किसान आवश्यकता अनुसार तरह तरह की कीटनाशक दवाई को छिड़काव करवा लगी गया है। अबे तो उनमें फूल आवा लगी गया है तो उनकी देख रेख की जिम्मेदारी और भी बढ़ी गई है। बाकी इन सब जानकारी के अपन अपना आगे प्रोग्राम में लांगा सही इकल एक कई नहीं करनो है। बस हमारे बने जुड़ो अपना साथ आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे ने सुनता रहो अपने यानी रेडियो पे। तो चलो एक ही जानकारी तो घनसाली लेनी है ने लांगा भी सही, पर जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अपन अपना कार्यक्रम के शुरू करवा का साथ मुख्य रूप से मालवी समाचार सुना हाँ, तो आज भी यानी श्रृंखला के क्यों थोड़ा आओ अपन अपना कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथ लई चला हमारे आज का मुख्य मालवी समाचार पे। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन प्रस्तुत है मालवी समाचार।

एक बार फिर नमस्कार। समाचार का साथ मैं तुम्हारा भाई सुमित कुमार। सबसे पहले अपन अपनी बुलेटिन का मुख्य समाचार सुन लो। तो प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का तहत आज तिरंगा यात्रा को समापन हुई गयो है। उसके बाद सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी पे आज प्रदेश का प्रमुख शिवालय और धार्मिक स्थल पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगेगी। और उसके बाद मौसम विभाग ने अगला 24 घंटा का दौरान राज्य का रायसेन मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट जारी करियो है। अब समाचार विस्तार थी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का तहत आज तिरंगा यात्रा को समापन हुई गयो है। अन्य अवसर पर राज्य का कई जिला में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस आयुक्त की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा वाहन यात्रा निकाली गई है। देशभक्ति का रंग में रंगे अन्य यात्रा में पुलिस अधिकारी ती लई के जवान तक ने उत्साह के साथ हिस्सों लियो है। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाई की रवाना करियो है। उनने बोलियो है कि राष्ट्रीय ध्वज खाली हमारी स्वतंत्रता और गौरव को प्रतीक नहीं है, बल्कि देश की एकता और अखंडता की पहचान है। तिरंगा यात्रा का माध्यम से पुलिस बल ने राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और नागरिकों का प्रति अपनी जिम्मेदारी को संदेश दियो है। तिरंगा वाहन यात्रा की शुरुआत कमिश्नर कार्यालय से हुई। यात्रा में भोपाल का लाल घाटी चौराहा थी पहुंची ने शहर का विभिन्न हिस्सा में राष्ट्रभक्ति को संदेश दियो। लाल घाटी थी यात्रा वापस कमिश्नर कार्यालय पहुंची जहां तिरंगा यात्रा को समापन हुई गयो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी का नया राष्ट्रीय पदाधिकारी उनकी घोषणा करी है। श्री नवीन ने मध्य प्रदेश का लाल सिंह आर्य सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति करी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। बीएल संतोष के भी संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विकल्प कुमार देव सहित 8 पार्टी नेता के राष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति करी हुई। पार्टी ने अपना विभिन्न मोर्चा के लिए मुख्य प्रमुख का नाम भी घोषित किया है, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी और युवा मोर्चा अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुज्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष हैं। उसके बाद बात करें अपन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोलियो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा थी कृषि और ग्रामीण भारत के नई दिशा मिलेगा। उनने बोलियो है कि सरकार जनता का हित में योजना बनी के और उनके प्रभावी ढंग से लागू करी के अन्य लक्ष्य के पूर्व करेगा। कृषि मंत्रालय का अनुसार शिवराज सिंह चौहान काले दिल्ली नई दिल्ली में शक्ति की सप्त धारा संकल्प को नेतृत्व करेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना का विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदाय का हित से जुड़िया महत्वपूर्ण

मसला पर चर्चा होगा। अनि बैठक को मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट और क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्य योजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदिया, कृषि निर्यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का प्रतिनिधि भी भाग लेगा। उका बात गुरु रविदास सिंह रविदास जी ने समरसता और सामाजिक सद्भावना का संदेश के जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त के भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समरसता संकल्प अभियान और यात्रा के तहत प्रदेश, जिला और ग्राम स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन होगा। बात करें आज का दिन की तो सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का विशेष संयोग पे आज प्रदेश का प्रमुख शिवालय और धार्मिक स्थल पे आस्था को सैलाब उमड़ी पड़ी है। सुबह तीज मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी दंगे आई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार के साथ आगर मालवा जिला का विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करी जा रही थी। रायसेन जिला का ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में विशेष श्रृंगार करो गयो। वहां उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी अभी निकली गई है। आखिरी में मौसम की जानकारी अपन ले ला तो प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगला 24 घंटा का दौरान राज्य का रायसेन मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करो है। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर संभाग का जिला में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भारी बारिश होने का दौर बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आज के मालवी समाचार से।

अभी अपन ने सुनिया आज का मुख्य मालवी समाचार एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पे उका साथे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पे आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी। अब देखो अपना कार्यक्रम के शुरू करवा का पहला मैं तुम्हारे बताई तू कि अपनो कार्यक्रम मुख्य रूप से मालवी में है और मालवी बोली की तो बात ही निराली है। मालवी बोली की जितनी करो इतनी कम है क्योंकि इनका जो शब्द रहे मालवी का जो अपन बात करा के कहीं करी रहा हो किस्तर कहीं हो क्या बिजी हो आजकल मतलब नगेन नहीं रहा आजकल तो ये जो शब्द रहे ऐसा तो बहुत सारा शब्द रहे पर मैंने ये तीन चार का उदाहरण दिया तुम्हारे पर ये जो शब्द रहे इनमें अपनी आत्मीयता साफ झलके हैं एक अपनोपन नगे आए हैं एक अलग प्रकार को अपनोपन दिखाई दे रही में ना अपन भी रोज आनी टाइम में मालवी में कार्यक्रम सुना जिनमें मालवी में जानकारी ने मालवी में समाचार ने उनका साथ एक ती एक मालवी गीत भी सुना तो यह भी एक अनूठी पहल है अपनी संस्कृति के बचावा की अपनी बोली के बचावा की। अब बात तो घनसारी करनी है ने करांगे भी सही पर उका पहला क्यों नहीं अपन अपना कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारा से गणेश वंदना ती कर ला क्योंकि गीत तो जरूरी है। तो आओ कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथ ले चला हमारे आज का मुख्य और पहला गीत पे।

0: ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: तो देखो अब अपन बात करवाना आज एक ऐसा विषय पे जो अपना सबका जीवन से जुड़े अंतर है। देखो आज की जिंदगी में सड़क और यातायात अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जरूरी हिस्सा है। गांव हुआ या शहर हुआ, हर दिन लोग काम, पढ़ाई, व्यापार, इलाज और दूसरी जरूरत खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाए है। सड़क पे बढ़ती गाड़ियां और लगातार बढ़ता यातायात सुविधा तो बढ़ावे, पर साथ में ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था और सड़क दुर्घटना जैसे सामने आवे है। इन समस्या ने कम करवा खातर मजबूत ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक व्यवस्था खाली पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सड़क पर चलावा वाला हर आदमी इन व्यवस्था को हिस्सों है। वाहन चालक, पैदल यात्री, ऑटो रिक्शा चालक, बस चालक, विद्यार्थी और दुकानदार सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़े हैं। सड़क पे एक आदमी की छोटी सी लापरवाही कई बार दूसरा का लिए बड़ी परेशानी या दुर्घटना को कारण बनी जाए है। ट्रैफिक नियम अपनी सुरक्षा खातिर बनिया है। अगर सड़क पे हर कोई अपनी मर्जी से वाहन चलावे तो कई थोड़ा का समय में यातायात पूरी तरह बिगड़ी जाए है। कोई लाल बत्ती पार करे, कोई गलत दिशा में गाड़ी चलावे, कोई तेज रफ्तार में वाहन दौड़ावे तो दुर्घटना की संभावना अपना आप बढ़ी जाए है। लाल बत्ती पर रुकनों, हरी बत्ती पर चलनों, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों उनके रास्तों देनों, सही लेन में वाहन चलानों, ओवरटेक करता समय सावधानी रखनों और गति सीमा को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचे कि थोड़ी देर खातर नियम तोड़वाती कहीं फर्क पड़ जाएगा, पर सड़क पर दुर्घटना कई बार एक छोटी सी गलती तीज हुई है। इकाले नियम पुलिस नियम तोड़ना गलत है और नियम पुलिस का डर ती नहीं बल्कि

खुद की सुरक्षा खातिर मानना चाहे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, सुरक्षा नियम में से एक है। कई लोग पास या दूरी का कारण हेलमेट नहीं लगाए, यहाँ तो जानो अपने मैरिज, और कई मालूम मेरे मैच कहीं

0: आदत शुरू से ही डालनी चाहिए। सड़क सुरक्षा की आदत बचपन से विकसित हुई है तो आगे चली के व्यक्ति जिम्मेदार वाहन चालक बनेगा। सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार भी बड़ी वजह बनी सके हैं। कई युवा खाली सड़क देखता ही वाहन की गति बढ़ाई दे है, पर सड़क पर अचानक कोई पैदल यात्री आई जाए, सामने ती वाहन आ सके या फिर कोई जानवर सड़क पार कर सके, तेज गति में चालक ने वाहन संभालना खातिर कम समय मिले, सामान्य गति में वाहन अचानक सामने से कोई आई जाए तो चालक समय पर ब्रेक लगा के वाहन रोकी ले है, पर तेज रफ्तार में वाहन रोकवाते ज़्यादा दूरी लागे हैं, ज़्यादा समय लागे हैं। इकाले सड़क की स्थिति अनुसार वाहन चलाना और तय गति सीमा को पालन करना जरूरी है। आजकल मोबाइल चलाता समय भी सड़क दुर्घटना को एक कारण बनी गयो है। वाहन चलाता समय मोबाइल पर बात करनी, मैसेज पढ़नो, वीडियो देखना या सोशल मीडिया चलाना चालक को ध्यान सड़क से हटाई दे है। कई बार खाली 2-3 सेकेंड खाते नज़र मोबाइल पर जावे, पर इन्हीं दौरान वाहन कई मीटर आगे निकली जाए है। इकाले वाहन चलाता समय फ़ोन को उपयोग नहीं करना चाहिए। जरूरी फ़ोन हो तो वाहन के सुरक्षित साइड में रोके बात करो नहीं यार, वो बेहतर है। शहर में कई जगह लोग समय बचाव खातर गलत दिशा में वाहन चलाई दे। कई लोग लंबा रास्ता बचाव खातर वन वे सड़क में उल्टी दिशा में घुसी जाए, अनिति सामने ती आता वाहन ने अचानक ब्रेक लगाने पड़े हैं और दुर्घटना खातिर खतरों बढ़ी जाए है। गलत दिशा में वाहन चलावती खाली खुद को नहीं बल्कि सामने आता वाहन चालक को जीवन भी खतरा में रहे है। इकाले वन वे में नो एंट्री और अन्य यातायात संकेतों को पालन करना जरूरी हो जाए है। तो आओ अनि संदर्भ में मुख्य रूप से अपना उज्जैन यातायात का पुलिस उप अधीक्षक दिलीप सिंह परिहारती यातायात का नियम के लिए विशेष वार्तालाप करा, जिसमें भी बताएगा कि अपने कैसे यातायात का नियम को पालन करना है। तो आओ पहला सुना यो भेंट वार्ता, उसके बाद बात करेंगे अपन।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में।
2: नमस्कार
1: सर, सर्वप्रथम आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम दिलीप सिंह परिहार है, मैं उज्जैन में ट्रैफिक डीएसपी के पद पर पदस्थ हूँ।
1: सर, उज्जैन शहर में वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं और किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यातायात का दबाव रहता है?
2: उज्जैन शहर में देखिए क्या है कि एक जो दो तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, एक तो यहाँ पर जो है एक आम ट्रैफिक हो जाता है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आना जाना अपना जो व्यवसाय करते हैं उनका आवागमन होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर श्री महाकालेश्वर जो मंदिर है उसमें आने वाले श्रद्धालु का भी जो यातायात आता है, तो ये दो प्रकार का यातायात यहाँ पर है। और यहाँ पर अभी जो वर्तमान में है तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ सड़कों का निर्माण चल रहा है, पुल पुलियाओं का निर्माण चल रहा है, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, पार्किंग भी अभी जो कुछ पार्किंग थी वो भी अभी लगभग जो है बंद हैं, व्यवस्थित नहीं है, तो इस कारण से अभी कई तरह की जो है यातायात की समस्या आ रही है। और इसमें जो सबसे अधिक जो यातायात का जो दबाव रहता है वो महाकाल क्षेत्र में रहता है, क्योंकि यहाँ जो है प्रतिदिन जो है लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और इस कारण सबसे अधिक दबाव जो है वहाँ पर रहता है।
1: सर, ट्रैफिक शहर में ट्रैफिक जाम के प्रमुख कारण क्या सामने आ रहे हैं? क्या इसके पीछे बढ़ते वाहनों के साथ साथ सड़क किनारे पार्किंग और अतिक्रमण भी बड़ी वजह है?
2: देखिए, शहर में जो ट्रैफिक है, एक तो सबसे पहली समस्या ये है कि अभी वर्तमान में जो उज्जैन की जो वाहनों की जो संख्या है वो लगभग 6.5 से 7 लाख है
1: जी।
2: तो इसमें आप ये मान लीजिए कि लगभग नहीं तो शहर में 50% तो वाहन शहर के ही होंगे पूरे जिले के रजिस्टर्ड वाहनों में से।
1: बिल्कुल।
2: और इसके अलावा जो है लगभग आप ये मानिए कि 25,000 से 30,000 वाहन जो है प्रतिदिन बाहर के आ जाते हैं, चारों तरफ से दर्शनार्थियों के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्रैफिक बढ़ा। और इसके अलावा क्या है कि व्यवस्थित पार्किंग स्थल नहीं है, व्यवस्थित पार्किंग स्थल नहीं होने से बाजार में या मुख्य मार्गों पर पार्किंग स्थल ना होने के कारण लोग क्या है सड़कों पर पार्किंग करते हैं, सड़क के किनारे पार्किंग कर दी, जिससे जो ट्रैफिक में यातायात में जो व्यवधान होता है। इसके साथ ही क्या है कि लोगों का जो ट्रैफिक के प्रति नियमों का पालन करने के प्रति जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, है ना, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे हमको बाजार में जाना है, किसी दुकान में जाना है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दिए, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दिए,

0: और अपने सामान लेने चले गए। उनको ये लगता है कि हम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए दुकान में जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो ट्रैफिक है रोड पर वो मिनिमम जो है 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो 1 मिनट में कितना फर्क पड़ जाता है उस रोड के अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब जो है ट्रैफिक व्यवस्था में जो है व्यवधान के जो है कारण है।
1: बिल्कुल सर, हम अक्सर देखते हैं कि शहर में भीड़ वाला इलाका जो महा मंदिर क्षेत्र है, तो ऐसे में सर महाकाल मंदिर क्षेत्र और आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात को सुचारू रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
0: देखिए, इसमें जो है मुख्य जो मंदिर के चारों तरफ के जो मुख्य मार्गों में जो प्रथम आता है, हरिफाटक टी से लेकर के बेगम बाग और महाकाल घाटी तक, फिर महाकाल घाटी से गुदरी, गुदरी से हरसिद्धिपाल, हरसिद्धिपाल से हरसिद्धि, हरसिद्धि से नरसिंह घाट, चार धाम, ये मंदिर के चारों तरफ का मुख्य मार्ग हो गया। तो इसमें जो है, जैसे पहले ऑटो ई रिक्शा इनका भी आवागमन था हरिफाटक टी से लेकर के और ये बेगम बाग वाले मार्ग पर, और इसी मार्ग पर जो है श्रद्धालुओं के भी वाहनों का आना जाना था, जिस कारण से काफी अव्यवस्थित हो रहा था यातायात। तो अभी पिछले 2 महीने से जो है हरी फाटक टी से बेगम बाग और महाकाल घाटी तक का जो मार्ग है, उसमें ई रिक्शा और ऑटो का जो है आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे जो है पिछले 2 महीने से आप देख रहे होंगे कि काफी अच्छा वहां पर व्यवस्था हो गई है, और एक आम श्रद्धालु को पैदल चलने के भी वहां पर जगह बढ़िया मिल गई है। इसके अलावा जो है, इसके बाद लोहा पुल से जो महाकाल घाटी का जो रास्ता है, उसमें भी हम जो है आवश्यकता अनुसार जो वाहनों का डाइवर्सन कर देते हैं, जिससे कि ये गुदरी और हरसिद्धिपाल वाला मार्ग भी जो है खाली कराते हैं। और इसके साथ ही जो है, जो 24 खंभा से जो मराठा होते हुए हरसिद्धिपाल वाला जो मार्ग है और हरसिद्धिपाल से गुदरी वाला मार्ग, ये भी क्या वन वे कर दिया गया है।
1: अच्छा,
0: तो इसमें वन वे करने से भी जो है वाहनों का, जैसे आप हरसिद्धिपाल से गुदरी तरफ जो है जा सकते हैं और मराठा से जो है हरसिद्धिपाल तरफ जा सकते हैं, ऐसा
1: दोनों
0: करके,
1: अलग
0: हाँ
1: अलग रास्ते कर दिए
0: दोनों
1: आने
0: अलग अलग
1: जाने के
0: वन
1: लिए।
0: वे कर दिया गया।
1: अच्छा
0: और इसके बाद अब आता है आपका हरसिद्धि वाला क्षेत्र जो है,
1: हाँ
0: तो इसमें नरसिंह घाट से हरसिद्धि चौराहा, चार धाम से हरसिद्धि चौराहा और हरसिद्धिपाल से हरसिद्धि चौराहा, इसमें जो है पूर्णतः वाहनों का आवागमन जो है
1: बंदे
0: प्रतिबंधित रहता है। इसमें 3 पहिया 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है, और 2 पहिया वाहनों का भी डायवर्सन किया जाता है उसमें।
1: जी।
0: तो ये जो है इस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाई गई है।
1: सर, हम शहर में अक्सर देखते हैं कि जो यहाँ के व्यक्ति हैं जो वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियम का पालन अक्सर नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? आप उनके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसा हम जानते हैं कि हर साल जो है लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती है,
1: जी
0: और 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख के लगभग मृत्यु हो जाती है, और अन्य जो है या तो गंभीर रूप से घायल होते हैं, किसी के हाथ पैर ऐसे, वो भी उसका भी नुकसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हम जो जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसमें स्कूलों में जा करके जो छात्र छात्राएं जो 10वीं से लेकर के 12वीं तक के हैं और जिन्हें अब वाहन लेकर के सड़कों पर आना है, उनको हम जो यातायात के नियमों की जानकारी देते हैं, जिसमें वाहन के संबंध में कि उनको किस किस दस्तावेज की आवश्यकता है, लाइसेंस की है, रजिस्ट्रेशन की है, बीमा की है, इसके अलावा जो है सड़कों का जो सड़क संकेत होते हैं ना, ट्रैफिक साइन होते हैं, रोड मार्किंग हो गई, इनके संबंध में जानकारी देते हैं, ताकि एक जब वो वाहन सड़क पर लेकर जाएं तो इन सब का उनको ज्ञान होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जब तक उनको इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो सड़क पर लगे संकेतों का है, ट्रैफिक सिग्नल का है, रोड मार्किंग का है, इनका सबका यदि उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो उसको समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो उसका पालन नहीं करेंगे। तो इन सब का हम ज्ञान देते हैं। इसके अलावा विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से है और मीडिया के माध्यम से है, हम जो है उनको प्रचारित करते हैं कि भाई आपको जो आज सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो रही है वो हेलमेट नहीं लगाने के कारण होती है ना। तो हम सड़कों चौराहों पे जा करके उनको ये बताते हैं कि भाई आप हेलमेट लगाइए, है ना, रॉन्ग साइड से मत चलिए, क्योंकि रॉन्ग साइड चलना अपने लिए भी घातक है और सामने वाले वाहन के लिए बहुत ज्यादा घातक है। बगैर लाइसेंस के वाहन ना चलाएं,
1: बिल्कुल
0: इसमें कई जो है खतरे हैं इसके, तो इस प्रकार से हम जो है जागरूकता अभियान चला करके लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देते हैं।
1: बिल्कुल सर। सर हम अक्सर देखते हैं कि तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में सर स्पीड कंट्रोल के लिए पुलिस के पास क्या व्यवस्था है?
0: देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओवर स्पीडिंग है, ओवर स्पीडिंग के कारण बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं,
1: बिल्कुल
0: और जिसमें जो है कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको लेकर के जो है हमारे पास ट्रैफिक में इंटरसेप्टर व्हीकल है, जिसको समय समय पर लगा करके इसके माध्यम से जो है चेकिंग की जाती है ना, जिससे जो है सामने से यदि कोई ओवर स्पीडिंग करता हुआ आता है वाहन, तो उसकी स्पीड आ जाती है इसमें, स्पीड निकाल करके और उसको रोक करके और उसकी चालानी कार्रवाई की जाती है इसमें।
1: जिससे उनको सबक मिल सके और वो फिर अगली बार से थोड़ी
0: हाँ
1: स्पीड कम करके
0: हाँ
1: चलाए।
0: कम
1: बिल्कुल
0: करके चले।
1: सर, आप अक्सर देखते हैं कि ये जो ओवर स्पीड और इनमें जो दुर्घटना में का अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो इसमें सर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने में आम आदमी थोड़ा हिचकिचाता है। वो ये सोचता है कि कहीं अपन पुलिस के झंझट में ना फंस जाए, अपने थाने वाने में नहीं जाने पड़े। तो ऐसे में आप एक आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मदद उन्हें करनी चाहिए या फिर पुलिस के डर से उन्हें बचना चाहिए?
0: हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा है और मैं मेरी इच्छा भी है कि लोगों को इसकी जानकारी मिले
1: बिल्कुल
0: कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की आप बिल्कुल निर्भीक बेझिझक होकर के सहायता करिए। अभी इसके लिए जो है सरकार ने एक राहवीर योजना भी लाई है,
1: जी
0: जिसमें यदि वो घायल की मदद करता है, कोई व्यक्ति जो है उसको गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है,
1: हाँ
0: जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, दुर्घटना का जो प्रथम घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं,
1: बिल्कुल
0: गोल्डन आवर में यदि पहुंचाता है और उसके जान की रक्षा करता है, तो उसको जो है सरकार की तरफ से नगद इनाम भी दिया जाता है।
1: अच्छा
0: तो इसके अलावा जो है जो सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है, यदि उसको किसी अस्पताल में आप भर्ती करते हैं, तो 1.5 लाख तक का जो इलाज है वो भी फ्री
1: अच्छा
0: है ना। उसमें जो है यदि उसका इंश्योरेंस नहीं है या स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, तो उसको 1.5 लाख तक जो है सरकार की तरफ से मदद भी की जाती है। इसके अलावा एक और योजना है, हिट एंड रन योजना है। जैसे
1: बिल्कुल
0: यदि कोई वाहन यदि कोई दुर्घटना करके भाग गया और उसका कोई नंबर नोट नहीं हुआ, उसके अज्ञात वाहन हो गया, तो अज्ञात वाहन का जो है पुलिस तलाश करने का प्रयास करती है, किसी सीसीटीवी कैमरा वगैरह होगा कुछ के माध्यम से, और यदि वो नहीं मिलता है तो उसमें खात्मा की कार्रवाई होती है, और उसके बाद जो है घायल व्यक्ति को 50,000 और मृतक को जो 2 लाख की मदद इसमें मिलती है, मृतक के परिवार को।
1: बिल्कुल
0: तो हिट एंड रन हो गया, राहवीर हो गई, और कैशलेस जो इलाज की जो योजना है सरकार की, तो ये भी जो है सारी योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए हमको बढ़ चढ़ करके जो है घायल व्यक्ति की जरूर सहायता करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर, इसमें फायदा एक घायल व्यक्ति का भी, उसका समय से उपचार हो जाएगा,
0: जी
1: और अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो आपको नगद पुरस्कार भी सरकार द्वारा मिल रहा है।
0: हाँ,
1: सर जैसा कि आपने बताया कि राहवीर योजना चल रही है, सर इसके बारे में बताइए, इसमें कितनी राशि आप सरकार द्वारा प्राप्त होती है?
0: इसमें जो है जो घायल की मदद करता है और उसकी जान बचाता है, उसको जो है सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम जो है दिया जाएगा, और सम्मान पत्र भी दिया जाता है।
1: क्या बात है
0: जी
1: सर। हमारे शहर की बात करें तो अभी हर जगह नई पुलिस, बहुत सारी पुलिस दिखाई दे रही है, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए सर, इनका क्या कारण है इतनी सारी पुलिस को सड़कों पे उतारने का?
0: ये जो है ये जो बल अभी आप देख रहे होंगे, ये सिंहस्थ प्रशिक्षण के लिए आया हुआ है यहाँ पर,
1: अच्छा
0: और पूरे प्रदेश से जो पुलिस बल आएगा सिंहस्थ में ड्यूटी करने के लिए, उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। तो ये उनको प्रैक्टिकल जो अनुभव होना चाहिए उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था का, उसके लिए जो करीब 250 जवानों को पूरे शहर के विभिन्न चौराहों और प्रमुख पॉइंटों पर लगाया गया है, जहां पर लगा करके उनसे यातायात संचालन करवाया जा रहा है, और उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि भविष्य में जब वो आएंगे यहाँ पर ड्यूटी के लिए, तो उनको किस प्रकार यातायात जो है
1: अच्छा
0: संचालन करना पड़ेगा।
1: सर, अंत में अब आम जनताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? वो शहर के अच्छे यातायात बनाने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए, मैं शहर की आम जनता से या आम वाहन चालक से ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने शहर का यातायात अच्छा बनाना चाहते हैं

0: तो आप जो है यातायात के नियमों का पालन करें और उनके प्रति जो है सचेत रहें। जब भी आप बाजार में जाते हैं, अपना वाहन जो है सड़क से नीचे जो भी आपको जगह मिलती है वहां पर पार्किंग करें, जिससे जो है वाहन के आवागमन के लिए जो है मार्ग खाली रहे। हम यदि ये सोचते हैं कि मुझे रोड खाली मिले, तो हमको भी दूसरे का भी ध्यान रखना है कि दूसरे को भी जो है रोड खाली मिलनी चाहिए चलने के लिए।
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा जो है हम ये ध्यान रखें कि मेरी तो ये अपील है कि आप दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल से बात ना करें, क्योंकि मोबाइल से बात करते समय जो होता हमारा ध्यान सड़क पर से हट जाता है और ये दुर्घटना होने के प्रमुख कारणों में से एक
1: बिल्कुल सर
0: है ना। बिना लाइसेंस के वाहन ना चलाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें। आजकल कोचिंग सेंटरों में, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनको माँ बाप जो है बगैर लाइसेंस के जो है वाहन दे देते हैं, बगैर हेलमेट के वाहन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है भविष्य में घातक हो सकता है आपके लिए।
1: बिल्कुल
0: और जब भी हम सिग्नल पर खड़े होते हैं, तो हम सिग्नल के तीन रंगों का सम्मान करें, रेड सिग्नल होने पर जो है रुकें और ग्रीन पर ही चलें। इससे जो है हमारे शहर का यातायात जो सुचारू रहे, रॉन्ग साइड से ना चलाएं वाहन। जब कभी भी हम, मैंने अक्सर देखा है कि जाम लगने का जो कारण होता है, हम अनावश्यक रूप से ओवरटेकिंग करते हैं। जब
1: बिल्कुल
0: हम सामने वाले यातायात को निकलने की जगह नहीं देंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: इसलिए जब कभी भी हम देखें कि हमारे आगे वाला यातायात रुका हुआ है, तो हम भी उसी के पीछे जो है एक लाइन बना करके रुकते जाएं, ताकि आगे यदि कोई व्यवधान होगा वो हट जाएगा और फिर ट्रैफिक जो सुचारू हो जाएगा। जहां हम 1 मिनट में निकल सकते हैं, वही हम अनावश्यक ओवरटेकिंग करके उसी को जो है हम आधे घंटे का या 40 मिनट का काम बना देते हैं। जहां हमारा 1 मिनट में हम निकल सकते हैं, हमारा 40 मिनट व्यर्थ में जाता है।
1: बिल्कुल सर
0: तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अकेले ये सोचेंगे कि नहीं हम पुलिस से अपेक्षा करेंगे, तो वर्तमान में पुलिस बल इतना नहीं है, पुलिस बल की भी कमी है। और जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये 6.5-7 लाख वाहन जो है नियंत्रित और अच्छा यातायात नहीं दे सकेंगे।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसो कि तुमने बताया कि अपना शहर का मनक अगर थोड़ी सी सावधानी रख ले, थोड़ा सा नियम उनका पालन कर ले, तो अपनी यातायात व्यवस्था सुगम बनी सकती है, सुव्यवस्थित बनी सकती है। तो सर ती बात करने को मुख्य महत्व यो था, मुख्य कारण यो था कि अपन अपना यातायात का नियम के थोड़ा समझा और उनका प्रति जागरूकता लाएं। तो हमारा हिसाब से अपना समय होने वालों है, तो आज अपन ने मुख्य रूप से माटी की बात कार्यक्रम में वर्तमान समय में यातायात व्यवस्था की कई स्थिति है, उसके बाद अपने सुगम व्यवस्था के लिए कई कणी कणी बात को ध्यान रख लो उपयोग खूब बात करी ना, अच्छी खासी जानकारी भी ले ली। अपन ने अपना सर से जो DSP है यातायात का उनसे बात भी करी, तो अभी अपना टाइम भी हो वालों है, तो हमारा हिसाब थी आज का ले इतरोज घणो, क्योंकि कल फिर आएगा सही। हम तो रोज यही रहा हमारा कने, हम भी रोज हमारे सुनी जा रहा हो, बस हमारे कहीं नहीं करना, अपना साथ बने रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, चकाचक रहना है, और उका साथे सुनता रहो आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र के FM 102.5 MHz पे, उका साथे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे। और आज कल हमारे दो अनुमति मैं लूँ सुमित, हमारा भाई सुमित कुमार, हम सबसे विदा, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय हिंद।

श्रोताओं, मालवा की माटी की सुगंध और लोक संस्कृति की यह झलक आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। नमस्कार। अब आप जल्द ही सुनेंगे सुर्खियों में का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से।

0: सुर्खियों में
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू
2: मुकुल जी। पिछले दो दशकों में ब्रिक्स एक आर्थिक संवाद मंच से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स की भूमिका में बदलाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कैसी संभावनाएं बनती हैं?
3: देखिए, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो रूस ने चाइना और भारत से ये कहा था कि हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर है या जो जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होता है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और वो हमारे ऊपर सैंक्शन डालते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन पड़ रहे थे, औरों के ऊपर नहीं पड़ रहे थे, उनको संभावना थी। तो वहां से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जब ये जो चीज एक छोटा सा ग्रुप तीन देशों का बना, उसमें फिर ये थिंकिंग हुई कि अन्य विकासशील देशों को भी जोड़ा जाए। तो उसमें ब्राजील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, और उसकी वजह से इसका आकार सिर्फ एशिया यूरोप तक नहीं सीमित रहने के बजाय एक वैश्विक इसका आकार बन गया। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 11 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो विकसित होते हुए देश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सबको मिलाकर विश्व का आर्थिक संपत्ति है उसमें आधे से ज्यादा अब ब्रिक्स में आ गई है। तो एक इनके ऊपर एक भार भी है कि अन्य देशों को एक दिशा दें, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, और अब हम दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब उस बराबरी के मुकाबले को करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि एक विजन या एक थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अभी तक तो ये था कि ये ठीक नहीं है, अब पहली बार भारत ने एक दिशा ये दी है कि हमको किस बात पर जोर देना चाहिए, किन चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। 170-180 विकासशील देश हैं, तो वो इस बैठक का ये महत्व है। और ये एवोल्यूशन कहिए या ये जो बदलाव आया है वो इसलिए भी आया है कि विश्व में भी अब एक बदलाव आ चुका है। जहां पहले एक तरफ आर्थिक या सैनिक या पर्यावरण अलग अलग माने जाते थे, अब ये बात सामने आ रही है कि सब सम्मिलित हैं। अगर पर्यावरण को दृष्टिकोण को हम नहीं जोर देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इन दोनों को मिला के हमारी सैनिक शक्ति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक शक्ति भी हर देश के पर्यावरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनती है। अगर पर्यावरण में समस्या होगी, शहरों में समस्या होगी, या तो हमारा आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। ये चीज सामने आ गई है
2: जी।
3: पहले ये कहा जाता था, या जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं वो ये कहते थे कि हिमालय की नदियों में पानी कम होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम गिर रही है। अब ये सामने आंकड़ा आ रहा है कि हिमालय की नदियों में पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा था, पर यूरोप की नदियां सूखती जा रही हैं। ये चीज आज विश्व के सामने, यूरोप के सामने आ गई है कि उनकी नदियां सूखती जा रही हैं, पर हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत ने अगर एक दिशा देता है कि अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, या जंगल ठीक से लगें, या हम वेस्ट कम करें, तो लोग सुनने को तैयार हैं
2: जी। मुकुल जी, भारत की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर विशेष तौर पर महत्व दिया जा रहा है। तो इसमें मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिस पर हम अभी से नहीं सदियों से जोर देते आए हैं।
3: देखिए, प्रधानमंत्री बहुत पहले ये बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमको ये नहीं देखना है कि हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस जिस पर जोर दे रहे थे, हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत फर्क है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जाना है। हमको देखना है कि जैसे जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, तो उसमें जो वेस्ट है या जो चीज हम बर्बाद करके फेंक देते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। ये आंकड़े सामने आए हैं कि वेस्ट में आधे से ज्यादा खाना फेंका जाता है
2: जी।
3: ये नहीं कि खराब हो जाता है क्योंकि सड़ जाता है।

0: क्योंकि तापमान ऊंचा है जैसे हमारे यहाँ होता है, कुछ खाना जो मंडियों में नहीं उपयोग में आता है, पर ये चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पे जो दुकानों से लोग खरीद के लाते हैं आधे से ज्यादा वो फेंक देते हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही थी कि देखो हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास, और इसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना है, पर अपनी लाइफस्टाइल जो हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं, इसी से फिर आगे चलता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। और अगर हमको कहा जा रहा है कि आप अपना विकास इस तरह से करिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर असर कम पड़े, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका असर हमारे जनजीवन में, हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी कहा था 2018 में, सबसे पहले कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि हम बर्बादी ना करें, और हम जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम अपना विकास रोकें, हम एक दिशा दे रहे हैं कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। और भारत तो इस स्तर पर है कि जैसे चाइना का विकास अब विश्व में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहा है, और वो एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल है या तेल या कोयला जो है उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं उनकी तुलना में, पर भारत के जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं वो वर्ल्ड की एवरेज से भी कम है। तो भारत ये कह रहा है औरों से कि देखो ये संभव है कि एक नई दिशा में हम विकास कर सकते हैं अपना, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वही किया जाए जो विकसित देशों ने किया, और इसकी वजह से हमारे ऊपर आप दबाव मत डालिए, पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को लेके भारत ने इस बैठक में आगे बढ़ाया है लाइफस्टाइल करके कि भाई देखो अगर हमको कुछ करना है तो हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो देखें, और हम इस पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको हम फेंके नहीं, पर हम ये देखें कि उसका फिर इस्तेमाल कर सकते।
1: आपने लाइफस्टाइल की बात की है, तो हमारे यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ, इस अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विकास करने की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स देशों के बीच में लाइफ जैसी जो व्यवहार आधारित पर्यावरणीय मॉडल की बातें हैं उनको व्यापक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है और इसके लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता होगी?
0: देखिए इसमें सहयोग तो यह है कि भारत ये कह रहा है कि कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, हम आपस में ऐसा नियम करें या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए ऐसे सिद्धांत बनाएं कि हम वेस्ट ना करें। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि विकसित देश ये कहते थे कि हम लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएंगे जो सबको पालन करना पड़ेगा। भारत ये नहीं कह रहा है कि ऐसे नियम बने जिसका सबको पालन करना होगा। भारत ये कह रहा है क्योंकि हमारे सभी देशों में नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, तो इन शहरों का आकार कैसा हो, हम अपना दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयास करें कि हम वेस्ट ना करें। तो भारत ये नहीं कह रहा है कि इसको एक कानून के रूप में हमको अपनाना चाहिए, पर इसको हमको एक स्टैंडर्ड कहिए या हमको एक दैनिक जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकार भारत ने कहा है इसी के लिए नहीं अन्य चीजों में भी, कि कोई नियम नहीं बनना है, कोई रेगुलेशन या फोर्स नहीं होना है, हमको स्वतः ही करना है क्योंकि ये हमारे हित के लिए है, तो ये एक्सेप्ट होगा।
1: अभी आपने सतत जीवन शैली की बात कही है, तो ब्रिक्स की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में भी सतत जीवन शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आम नागरिकों की जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सके, जैसे कि आपने आर्थिक विकास की बात सबसे पहले कही थी।
0: देखिए अभी तक तो थिंकिंग ये थी कि जो विकसित देशों ने मॉडल अपनाया है या जिस प्रकार से उनका विकास हुआ है सबको वही तरीका अपनाना चाहिए। चाइना का विकास हमारे से पहले हुआ है
1: जी,
0: उनने एक दिशा दिखाई कि भी जरूरी नहीं है कि उसी तरह से शहर बने, उसी तरह से हम लोग एनर्जी उत्पादन करें, कहते हैं सोलर और विंड की तरफ जाइए। तो भारत का एक योगदान इस तरफ नहीं हो रहा है कि हमारा उत्पादन में हम क्या परिवर्तन करें जो चाइना ने किया है। भारत ये कह रहा है कि जो हमने नगरीकरण कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें हमको विकास परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने आगे कुछ विचार रखे हैं इस बैठक में कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, उससे बचाव करना है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नदियों में उतना कमी नहीं आ रही है जितना यूरोप में आ रही है, तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है जो उनकी प्राथमिकताएं हैं कि बर्फ कम गिरेगा, बारिश कम होगी, नदियों का पानी कम होगा। हमको ये देखना है, पेड़ लगाओ, हमको ये देखना है कि सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, पर हमको जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, जो उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो हम पेड़ से अपना दृष्टिकोण हटाकर जमीन की तरफ ले जाएं, एक बहुत

0: बड़ा परिवर्तन है। हम ये ना देखें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ये देखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको देखें। तो एक नई दिशा ये दी जा रही है इस बैठक में कि समस्या तो वही है, उसका निदान क्या होगा उसमें हमको ये देखना है कि वो निदान ऐसा ना हो कि जो उनने हमसे कहा है जो उनके लिए फायदामंद हो सकता है या उनकी परिस्थितियों को देखता है, पर उसका निदान हमको ये देखना है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जा सकता है। और जितने भी ब्रिक्स देश हैं या अन्य विकासशील देश हैं, सब में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग देहात में अभी रहते हैं और रहते रहेंगे। तो इसलिए जो नई दिशा दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाइव से शुरू किया और आगे भी कहा जा रहा है कि जो हमने परिभाषा हमने अपनाई थी उनके कहने पर, उसको हमको एक नई दिशा देनी है, वो आगे बढ़ रही है।
1: मुकुल जी, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी केंद्र हो, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिशें की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आपको क्या लगता है कि कैसे ये परिणाम अपना देंगी और क्या आवश्यक है उनको प्राप्त करने के लिए?
0: देखिए, भारत का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कहा, अपना मिसाल दिया है कि जो ग्लोबल एमिशन का एवरेज लेवल है उससे भारत कहीं कम है और विकास हो रहा है भारत में। तो उसी धारा को लेकर इस ब्रिक्स समिट में जो सूचना मिल रही है कि जो अधिकारी स्तर पर बैठक हुई है या हो रही है, उसमें ये बात आई है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सिर्फ घोषणा तक न रखें पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, इसको हमको लागू करना है
1: जी।
0: तो वहाँ ये बात आ रही है कि मिसाल जो बात आई कि साहब ये जो जंगल में आग लगती है, तो ये बात आ रही है कि उसमें टेक्निकल नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए, उसको हम शेयर करें। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की बात की कि हम वेस्ट ना करें, तो ये आया कि कुछ उसके कुछ नियम बनने चाहिए, कानून नहीं बनने चाहिए पर कुछ नियम बनने चाहिए। और ये बात आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारे गांव में हर देश की सभ्यता में जो जिस तरह से ये रहते थे लोग, उसको भी हम एक आंकड़े में लाएं। तो एक तरफ से तो ये है कि नई दिशा है, दूसरी तरफ से ये है कि टेक्निकल लेवल पर, डेटा की लेवल पर भी चर्चा की जा रही है कि इसमें भी एक समानता आ जाए ताकि हम आपस में इसको शेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबको फायदा हो, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी एक नई दिशा आई है कि एक्सपीरियंस शेयर करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमको विकसित देशों से सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने पास ही इतने साधन है, इतना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और हमारे पास डेटा को एकत्रित करके हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नई बात आई है इस बैठक में।
1: मुकुल जी, जंगल की आग का जिक्र किया आपने, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो हमें नजर आता है कि भारत में भी जंगल की आग का सामना करना पड़ता है लोगों को और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जंगल की आग लगती है, कई सारे जंगल बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि एक जंगल खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है लेकिन राख होने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। ये जो स्थिति है, इससे निपटने के लिए किस तरह की प्रणाली या फिर किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह से संस्थागत सहयोग किया जा सकता है या कैसे बदलाव लाया जा सकता है कि हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना भी ना करना पड़े और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हो?
0: देखिए, जंगल में आग तो हर जगह लगती है। ये देखा गया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तापमान की वजह से जंगल में भीषण आग लगी है। भारत में विशेषता यह है कि भारत अकेला देश है विश्व में जिसमें फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है
1: जी।
0: किसी भी देश में फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं माना गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, उनकी क्षमता, उनकी सोच अन्य देशों से फर्क है। तो इसलिए इस बैठक में जो बात आ रही है कि अर्ली वार्निंग पर जोर दिया जाए
1: जी,
0: कि हम क्या प्रयास करें, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ पहले से आइडिया हो जाए कि यहाँ आग आएगी, इस तरह से हवा के प्रकोप से बढ़ेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर भारत में अच्छा काम हुआ है सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत सोच के इस बात को रखा है क्योंकि भारत में ये क्षमता है, भारत और देशों को इसमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के साथ। तो मेरे ख्याल से इसमें सफलता मिलेगी और ये फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान पर आएगा
1: जी। मुकुल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी आदिति निगम। श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ चुनिंदा बेहतरीन गाने जो आपके मूड को और भी सुरों से सजा देंगे, यादों को ताजा कर देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में फिल्म लव से लिया गया ये बेहतरीन गाना, जिसमें संगीत आनंद मिलिन का है और गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और आवाज़ SP बालसुब्रमण्यम और चित्रा की है।

श्रोताओं, अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से, जिसमें आवाज़ जुबिन गर्ग की है और संगीत प्रीतम ने दिया है।

श्रोताओं, फिल्म प्यार तूने क्या किया से आपको सुनवाते हैं एक बेहतरीन गाना। गाने में आवाज सोनू निगम और अलका याग्निक की है। गाने के बोल नितिन डायकवाड़ ने लिखे हैं और गाने में संगीत दिया है संदीप चावड़ा ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म से एक गाना जिसमें आवाज अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की है, संगीत आनंद मिलिंद का है और गाने को समीर ने लिखा है।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, फिल्म यारा दिलदारा से सुनिए एक और प्यारा सा गाना, जिसमें आवाज उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है। गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत जतिन ललित का है।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब आप जल्द ही सुनेंगे समाचार संध्या का रिले दिल्ली केंद्र से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर

0: और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का

0: आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. over 200 operatives held.

0: कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत तकरीबन 7,900 करोड़ रुपए मालियत की 31 नई तजावीज को मंजूरी दी है। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने इम्तिहानी असलाहत के मौजू पर सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। वजीर तालीम ने सभी इम्तहानात के तरीक़ाकार का जामे ऑडिट करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी। बीजेपी ने पार्टी अहदेदारों की नई कौमी टीम का ऐलान किया है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया टीम में शामिल अहम नाम हैं। कतर में रिहाइश पजीर भारतीय अब डाकखानों के जरिए UPI से अपने घर रकम भेज सकते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में गाले टेस्ट की पहली इनिंग्स में भारत ने श्रीलंका को 284 रन तक महदूद करते हुए 178 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इत्तला दी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने यौम आजादी से कबल ISI की हिमायत वाले दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया है। जनाब शाह ने बताया कि हुकूमत ने इस ग्रुप के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके मुमकिन हमलों के मंसूबों को भी नाकाम बना दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर तालमेल पर मबनी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए इस नेटवर्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के भारत के अज़्म की उम्दा मिसाल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस महीने की 12 तारीख को रियासती पुलिस फोर्सेज के साथ मिलकर कई रियासतों में तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के जरिए हकीकी वक्त पर मबनी इंटेलिजेंस इश्तराक की बिना पर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी है। ये नेटवर्क यौम आज़ादी के आसपास खलल डालने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान 14 रियासतों से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 अफराद शामिल हैं। ISI की माली एयानत वाले इस ग्रुप से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। ये नेटवर्क मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम ISI की हिमायत वाला दहशतगर्द ग्रुप है, जो भारत में ग्रेनेड, IED, पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड किलिंग्स में मुलव्विस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस, दिफाई तनसीबात और मजहबी मकामात की रेखी के लिए मुकामी कारिंदों को रकम अदा करता था ताकि वो जासूसी के लिए CCTV कैमरे नसब कर सकें। शहजाद भट्टी नेटवर्क मामले में अब तक 80 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। हर घर तिरंगा मुहिम के पांचवें साल ने एक तरफ जहां तिरंगे को लाखों भारतीयों के दिलों से जोड़ा, वहीं सरहद पार भारतीय भी तिरंगा लहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए यकजा हुए। मुल्कगीर पैमाने पर मनाई गई इस मुहिम ने शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाया, कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया और भारत के सकाफती विरसे को फरोग दिया। साल 2022 में शुरू हुई हर घर तिरंगा मुहिम अवामी शमूलियत वाली मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक के तौर पर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील से मंसूब रही। इस मुहिम ने हुब्बुल वतनी के मुनफरिद इम्तजाज के तहत कौमी परचम और कौमी गीत को यकजा किया। इस साल की मुहिम की खासियत लोगों का इसमें नित नए तरीकों से शामिल होना था। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों, सकाफती जुलूसों, स्कूल और कॉलेज प्रोग्रामों और बिरादरियों के जश्न में हर घर तिरंगा का जज्बा साफ नजर आ रहा था। स्कूलों और कॉलेजों ने कौमी परचम और वंदे मातरम के बारे में जानने के लिए नौजवान लोगों की हौसला अफजाई की। ये मुहिम हर साल लोगों को तिरंगे से जोड़ने के नए तरीके लाती है और साल 2026 में भी इस मुहिम को मनाने का दायरा काफ़ी वसी रहा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: हुकूमत ने 7,877 करोड़ रुपए की तखमीना जाती

0: मायाकारी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत 31 मजीद दरख्वास्तों को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों से 9,500 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ये दरख्वास्तें 10 रियासतों से मौसूल हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 दरख्वास्तें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी नामे सौंपे। ये दरख्वास्तें एसिटाइलिन ब्लैक स्पीकर्स और माइक्रोफोन ऑप्टिकल कैपेसिटर्स ट्रांसीवर्स और कॉयल्स जैसी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इन 31 मंजूरियों के साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों की मंजूर की गई दरख्वास्तों की मजमूई तादाद 106 हो गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने 59,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रागिब करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने हदफ से आगे बढ़ गई है और 69,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर चुकी है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2,50,000 लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: वजीर तालीम जनाब प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनकता निजाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया है कि वो सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और उसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज पार्टी के कौमी ओहदेदारों की नई टीम का ऐलान किया। जनाब नबीन ने 13 कौमी नायब सुदूर का तकरर किया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं, जबकि जनाब पीयूष गोयल को पार्टी का कौमी खजांची मुकर्रर किया गया है। नीज BL संतोष को तंजीमी कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव समेत पार्टी के 8 लीडरों को कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। पार्टी ने मुख्तलिफ मोर्चों के लिए भी नए सरबराहों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डॉक्टर हेमंग जोशी को बतौर युवा मोर्चा सदर, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा सदर और बंसीलाल गुजर को किसान मोर्चा का सदर के तौर पर तकरर किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ओहदेदारों की नई टीम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात और नफसियात पर असरअंदाज होने वाले मादों की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मुलव्वस गैर मुल्की शहरियों के लिए जमानत की शराइत सख्त कर दी है। ये फैसला फर्जी जमानत के खदशात के मद्देनजर किया गया है। इस सिलसिले में मुतादिद हिदायत जारी करते हुए जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत पर रिहा होने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने पासपोर्ट मुतालिक अदालत में जमा कराने होंगे और उन्हें पेशगी इजाजत के बगैर भारत से बाहर सफर करने के मजाज नहीं होंगे। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसे मुलजिमान को रिहाई के एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों के इंदराज के इलाकाई दफ्तर FRRO में अपना इंदराज कराना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि आमतौर पर मुलजिम की जमानती मुचलके की रकम के मसावी 2 जमानतें भी जमा करानी होंगी। इसके अलावा अगर तफ्तीश के दौरान मुलजिम के भारत में रिहायशी पते और राबते की मालूमात की तस्दीक हो चुकी हो, तब भी जमानत के हुक्म के 3 दिन के अंदर इन मालूमात की दोबारा बजाते खुद पेश होने पर तस्दीक की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2 नामालूम अफराद के मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में खुफिया मालूमात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधमपुर के जंगलाती इलाके रामनगर में नाकाबंदी और तलाशी की वसी मुश्तरका कार्रवाई की। जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी कार्रवाई

0: ग्रुप एसओजी, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने जोफर इलाके की नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद का पता लगाने के लिए तलाशी की कार्रवाई की। आला अहदेदारों की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कार्रवाई में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इलाके में कई मकामात पर यह कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने मकामी लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तआवुन करने की अपील की है। उधमपुर जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकसी बरत रही हैं और अमन और सलामती को लाख किसी भी खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने कहा है कि 3 अगस्त से शुरू किया गया नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रखा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए जनाब पांडे ने कहा कि बोर्ड इदारे की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज पर गौर करेगा और जरूरत के मुताबिक तब्दीली भी लाएगा। सेबी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सेबी की जानिब से मुतारिफ कराया गया 3:15 से 3:35 तक 20 मिनट का नीलामी सेशन है। इसका मकसद F&O सेक्शन में शामिल स्टॉक्स की सरकारी अख्तितामी कीमत तय करना है, जिसके लिए ऑर्डर जमा किए जाते हैं और उन्हें एक वाहिद मुतवाजन कीमत पर मैच किया जाता है। अब कतर से भारत रकम की मुंतकीली के लिए UPI से मुंसलिक पोस्ट ट्रांसफर सर्विस दस्तियाब है। इस सर्विस के तहत कतर में मौजूद सारफीन कतर पोस्ट के मराकज के जरिए बराह रास्त भारत में UPI से मुंसलिक बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल कर सकते हैं। मवासलात की वजारत के मुताबिक ये सर्विस रुकूम की बैन अलाक्वामी मुंतकली के लिए एक तेज, महफूज, आसान और काबिल रसाई जरिया फराहम करती है, जिसे खासतौर पर कतर में मुकीम बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी और भारत में मौजूद उनके अहले खाना को फायदा पहुंचेगा। यह इकदाम डाक के निजाम की वसी रसाई को भारत के डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ता है, ताकि सरहद पार रुकूम की मुंतकली का एक मौसर और आसान वसीला फराहम किया जा सके। शिमाली उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जहां 6 जिले और 126 गांव नदियों की बढ़ती सतह आब और लगातार बारिश की वजह से मुतासिर हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा के 6 जिले के उंझड़, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रपाड़ा में सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा है और 1304 गांव के तकरीबन 8,00,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। बेतरानी, बरहमनी और सालंदी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों में लोग खुराक, पीने के पानी और बिजली की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने झारखंड में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान श्रीलंका को पहली इनिंग्स में 284 रन पर आउट कर दिया। इस तरह भारत ने 178 रन की सबकत हासिल कर ली है। भारत की जानिब से सबसे ज्यादा 4 विकेटें मानव सूथर ने ली, जबकि रविन्द्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में जडेजा ऐसे चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेटें ली हैं और 4,000 रन बनाए हैं। साबिक आलमी चैंपियन PV सिंधु ने आज कहा कि कोर्ट की हालत बहुत बेहतर है, जिससे उन्हें अपने खेल को अच्छी तरह तरगीब देने में मदद मिली है। आयरलैंड की अपनी हरीफ खिलाड़ी सोफी नोबल पर जीत हासिल करने के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यौम आज़ादी से कबल ISI की हिमायत वाले शहजाद भट्टी दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत तकरीबन 7,900 करोड़ रुपए मालियत की 31 नई तजावीज को मंजूरी दी है। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने इम्तिहानी असलाहत के मौजू पर सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। वजीर तालीम ने सभी इम्तिहानात के तरीक़ाकार का जामे ऑडिट करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी। BJP ने पार्टी अहदेदारों की नई कौमी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारी

0: कंपनियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2381-0481-2371-7117-2371-7106 और 2334-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है? आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा अच्छा हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे एफबीओ क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके. उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्विवेलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है एफबीओ को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का. उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए. क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा. तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है. मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए. हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में. हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कई भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओमोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: जी नमस्कार
0: जी, बताएं क्या सवाल है आपका.
3: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है.
0: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका.
2: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रासूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए. उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए. डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
0: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है, पिछले एक साल में CCPA ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं.
1: CCPA की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
0: बहुत बड़ी कार्रवाई.
1: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब UPSC का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
0: बैनर लगे होते थे.
1: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो UPSC के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी. तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा गया था।

जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जप्टो है, इंडिगो है, बुकमाइशो, स्पाइसजेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही CCP ने की

0: में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है। इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस पर थोड़ा सा आप इसका बता दें।
1: जी कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
2: जी बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
2: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है करके।
1: जी जी जी, FSSAI का।
2: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का, दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हसार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है, तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
3: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
3: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
3: उसका पेमेंट कर सकते हैं, और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है, और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो

0: फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर मतलब एनआरआई जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो यूएसए चाइना दुबई कई ऐसे देश हैं जो हमारे वीसी के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में मराठी में गुजराती में तमिल में जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: हेलो नमस्कार
1: जी श्रीकांत जी। श्रीकांत जी
2: श्रीकांत जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी।
2: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है तो इसके समाधान का क्या मतलब तरीका क्या है मतलब।
1: कविता मैम आपसे सवाल है ये।
3: हाँ जी क्वेश्चन ये है मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया वही उनका सवाल है ना। हाँ जी मतलब एनी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा एक साल और सिक्स मंथ वो एफबीओ टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है मैंडेटरी है सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लेबल नहीं देखते जनरली अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है मतलब क्योंकि एक पैकेट प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है। इसका पनिशमेंट भी है
1: जी। अनुपम जी क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
0: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी जी किसी भी वस्तु से किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी।
0: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 1915 है यह टोल फ्री है
1: जी।
0: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 8800195880019। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और पिछले एक वर्षों में NCH के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी। और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से। उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा।
3: हाँ जी नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड

0: स्कोर है बीटासिटोसिटाल करके, उसका प्रेसेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कॉम्पोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। इसीलिए इतना इसी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है। सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है, मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है, कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर, पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है, अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हॉलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
2: इसमें बेसिकली तीन निशान है, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उस पर 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप, जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
3: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते कंप्लेंट कर सकते हैं या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी
2: पूछिए। आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहां कीजिए, वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है, उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और पोस्ट कॉस पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस खुद स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करते हैं।

0: ये दे सकते हैं आप. हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर. अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे.
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है, और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है. उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशन देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल. इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं.
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक. नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है. तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू. ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है.
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
0: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर. सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है. लेबल में क्या दिया है, हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं. आजकल हम बताते हैं, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए. सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से. अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम, मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच करना, वो भी
1: समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए. तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े, और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
2: धन्यवाद.
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण। पहली फरमाइश दिल्ली शहर मुरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की है। अगली फरमाइश है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश भेजी है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से फरमाइश करते हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार जतिन ललित।

चुपके चुपके फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोलो और संगीतकार एस डी बर्मन। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही और महराज जहां। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से फरमाइश की है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर चुपके चुपके फिल्म का गीत।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश साहू, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है। आशा भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाज़ों में नमक हलाल फिल्म के गीत की। अनजान ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

नेपाल पहले सागर से फरमाइश करते हैं तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोबिन। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुज्तबा खान, आफिया खान, रऊफ और शहीद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गोला बाजार बक्सर से गीत सुनना चाहते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी ने फरमाइश की है दिल मांगे मोर फिल्म के गीत की। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर की शब्द रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत।

और ये है आज के कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत। मेरा नाम जोकर फिल्म का नाम है। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है। शैली शैलेंद्र ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। गीत को सुनने की फरमाइश की है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ यादव मोहल्ला सनावद से फरमाइश करते हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। अगली फरमाइश राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से है। एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

और इसी के साथ आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए ध्यानेश खान का सरोद वादन, राग है माझ समाज, क्षमा कीजिए माझ खमाज राग है, और तबले पर संगत की है इस्माइल दद्दू खान ने।

0: अभी आपने सरोद वादन सुना, राग था माज खमाज। कलाकार थे ध्यानेश खान, तबले पर संगत की थी इस्माइल दद्दू खान ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप

ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।